बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430। क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली रोड, बुढ़नपुर, अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
0: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।

0: खाटू वाले की सबसे बड़ी खासियत, सबको खुश रखने वाले का,
1: खुश रखने वाले का।
0: सारी दुनिया दावा करती है कि बाबा हमारा है, फ्लाइट से आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है, पेट पलनिया आने वाला भी बोलता है बाबा हमारा है। लेकिन बाबा की खासियत देखो, कोई खाटू आकर बोले ना बोले कि बाबा हमारा है, लेकिन बाबा शाम पूरी दुनिया का आज हो रखा है। बाबा बोलता है तू मेरा।

विश्व की सबसे सुंदर आवाज मैं कहूंगा। हम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मेरे बाद वो आएंगे। कोई वक्त होता था आज से 22 साल पहले जब मैं भी वहां खड़ा होकर देखता था कि इस सूरज को कब नजर से देखूंगा। यह उसी की कृपा है कि उस सूरज के साथ खड़ा हूं।

अभी रोहतक गया मैं कीर्तन के लिए, तो वहां एक भाई मिले, बोले मेरे को एक बुजुर्ग माता जी मिली। मैंने उसको पूछा, माता जी कहां जा रहे हो? बोली मैं वहां जा रही हूं जिसके भजन कन्हैया मित्तल गाता है। तो मैंने शब्द बदल दिए, कन्हैया।

0: कैमरे के साथ बिताने का।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: और बहुत ही अच्छा लगता है मैम। अच्छा, एक विमेंस के लिए सही खान पान से न्यूट्रिशन का होना कितना जरूरी है? अगर मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक फीमेल के लिए उसका डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी लाइफस्टाइल को बदलने में?
3: सी यार, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये अभी हो रही है। पुराने जमाने में आप अपनी दादी नानी से बात करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बोलते थे, मतलब माई दादी यूज्ड टू से कि हमें तो हमारे हस्बैंड छूते थे और बच्चे हो जाते थे। पता नहीं आजकल की लेडीज का क्या हाल होने लगा है। ये तो इनफर्टिलिटी ही ट्रीट कराती रहती है, IVF करा रही है। प्रॉब्लम क्या थी? सी प्रॉब्लम थी, उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, प्लस वो इतने एक्सपोज नहीं थे केमिकल्स के लिए। बैलेंस डाइट ले रहे थे, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज इन अ सेंस, हमारे सारे काम जो होते थे मैनुअल होते थे, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेते थे। पर जब से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आ गया है, बच्चे रात भर 2-2 बजे तक ही मोबाइल ही देखते रहते हैं। दिस इज अ रेडिएशन, है ना? आप रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, प्लस उनका खान पान बदल गया है। हर चीज स्विगी हो गई है, हर चीज स्विगी हो गई है, तो आप घर बैठे ही सब कुछ मंगा रहे हो, ठीक है। बाहर का खाना ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएगा, आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है,
2: करेक्ट,
3: ठीक है। हाँ, सब चीज ऑनलाइन हो गई है, सब चीज कैब्स पे आने लगी है, तो इवन पार्क में भी यू विल गेट अ वेरी लेस गैदरिंग,
2: करेक्ट,
3: है ना। तो दिस ऑल लीड टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये PCOS, PMS कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इट इज ओनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कि आपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा। आप कार लेते हो, ठीक है, कार लेते हो तो कार की सर्विस कराना जरूरी है। वंस इन अ ईयर उसकी सर्विस होना जरूरी है। आप नहीं कराओगे तो 2-3 साल बाद उसका माइलेज जीरो है। ऐसी आपकी बॉडी का हाल है। अगर आप उसको नहीं सर्विस करेंगे, उसको नहीं नेचुरल चीजें देंगे, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नहीं रिएक्ट करेंगे। एंड आई एम गेटिंग PCOD के पेशेंट, इतनी जिद्दी PCOD कि हम सब कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे साइकल्स ऑफ हार्मोन दे चुके हैं, बट बेसलाइन बॉडी आने को तैयार।
2: बिल्कुल मैम, यू नो मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप अभी बता रहे हो ना, ये चीजें मुझे लगता है हमें बताने की जरूरत ही नहीं। वैसे लोगों को खुद ही इन चीजों को समझना चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल अलग ही हो गया है ना, बात ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज और है, आजकल का स्ट्रेस, सोशल मीडिया की तो हमने बात ही कर ली, आजकल का लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस और हमारा खान पान, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के रीजन कहीं ना कहीं बनी रहा है।
3: Exactly.
2: जैसे आपने बताया कि लोगों को आजकल हर चीज ऑनलाइन करानी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है, फूड ऑनलाइन करना है, हर चीज की फैसिलिटी उन्हें घर बैठे ही चाहिए।
3: Exactly.
2: तो इन सब चीजों की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल, आपने ये चीज पे अभी जो आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज, हमारा भी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी प्लीज अब कीजिए, अगर जितना हो सकता है ना आप प्रैक्टिकली बाहर निकलिए। छोटी छोटी चीजें जो हम अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार शाम को बाजार निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, आज ऑनलाइन मंगा लेते हैं, यही सब चीजें जो हमें उस तरफ लेके जा रही है जिस तरह हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आज हम जहाँ पहुंच गए हैं।
3: Exactly.
2: कहीं ना कहीं
3: तो वर्स ही होंगी।
2: एब्सोल्युटली, कहीं ना कहीं
3: डोंट इंटरवेंट, राइट,
2: करेक्ट, करेक्ट। अच्छा मैम, जो लोग अभी मैं बात करूं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले कपल्स को किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए, और कौन कौन से हेल्थ चेकअप है जो उनको डेफिनेटली दिमाग में ध्यान में रखनी चाहिए?
3: 5 मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। एक, प्री प्रेगनेंसी आप अपना चेकअप कराएं, ठीक है। दूसरी बात, फोलिक एसिड स्टार्ट करें। जब भी आपकी प्रेगनेंसी प्लान है उसके कम से कम 3 महीने पहले हम ये कहते हैं कि आप फोलिक एसिड काम करना शुरू करें। तीसरी चीज, थायराइड, शुगर, ये सब आप बेस टेस्ट कराएं। चौथी चीज, हेल्दी वेट मेंटेन करें। और पांचवी चीज, यदि आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल इंटेक है तो ये बिल्कुल बंद हो जाए।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैम, सोशल मीडिया का थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, स्पेशली लेडीज बहुत ज्यादा ये चीज को मैंने देखा फॉलो करती है। तो मतलब कोई भी आ गया, किसी ने भी आके ज्ञान दे दिया, आप ये चीज करो, आप ये रेमेडी करो, ये करो, और लोग वो करते भी हैं।
3: Exactly.
2: तो क्या ये विमेंस को करना चाहिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो घर में महिला है, उनको ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया देख के फॉलो करना चाहिए?
3: नहीं, एक्चुअली इससे ही बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको की सीजर की हिस्ट्री थी, सीजर डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते थे,
2: ठीक है, ठीक है,
3: पूरी टर्म प्रेगनेंसी थी, बट उसने किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, कोई इंस्टाग्राम की रील देखी, उसमें कोई दवाई जो थी वो खा रही थी। अब वो ओपीडी मैं एक रूटीन चेकअप के लिए आई थी और रूटीन चेकअप के लिए बाहर बैठी थी और उतने में उसको सीजर्स आने लगे एंड शी स्टार्टेड ड्रूलिंग फ्रॉम माउथ, ब्लड आने लगा और वो आने लगा. तो उस वक्त और प्लस बच्चे की धड़कन जाने लगी, तो हमें एकदम इंटरवीन करके उसको सिजेरियन में लैंड करना पड़ा. हालांकि वो सेकंड ग्रेविडा थी, तो आई वुड नेवर गो कि दूसरा बच्चा पहला बच्चा नॉर्मल है, तो आई वुड हैव ट्राइड कि मैं नॉर्मल कराऊंगी. बट मेरे सामने उस वक्त इट वॉज एन इमरजेंसी, डाइंग इमरजेंसी, कि मुझे बच्चा और माँ दोनों बचाने थे. तो उसके लिए हमने जल्दी से ओटी शिफ्ट किया गया, पेशेंट इंट्यूबेट हुई, 2 दिन आईसीयू में रही. तो दिस कुड ऑल बी प्रिवेंटेड कि अगर आप एक न्यूरो फिजिशियन का रेफरेंस कर लेते, टाइमली हम इंटरवीन करते, प्लान करके डिलीवरी कराते. सो दिस इज ऑल डिवास्टेटिंग इफेक्ट. अब उसमें सोशल मीडिया में हर कोई डॉक्टर, आप पहले उसकी डिग्री तो एटलीस्ट टैली करें.
2: Correct.
3: कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट. प्लस सोशल मीडिया पे कभी दवाइयां फॉलो नहीं करनी चाहिए.
2: करेक्ट.
3: कैन फॉलो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या फिर सोशल मीडिया इज ओन, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आई ओनली मेक कि ये पेशेंट के सीरियसनेस है, इसमें डॉक्टर को दिखाएं. इट इज नॉट लाइक आप दवाई खाने लगोगे उस सोशल मीडिया से ना.
2: करेक्ट.
3: सर्टिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस ले, क्रॉस चेक करे, डाउट्स हो तो डॉक्टर से पूछे. जितनी भी बात है आप 10 मिनट 15 मिनट आप उस ओपीडी में बैठे हैं तो यू कैन आस्क एवरीथिंग यू वांट. तो उससे ये जो अचानक से लास्ट में डायग्नोसिस बनती है ये नहीं बनेगी. तो सोशल मीडिया का प्लीज फायदा उठाएं. इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल. आई अपडेट कि थोड़ा सा पेशेंट को ये लगना चाहिए, पेशेंट फील कि हाँ भैया मैम घर का पार्ट है, कल थोड़ा सा फनी रील्स, थोड़ा सा ये. सो इट इज ओनली टू कनेक्ट विद पीपल, नॉट कि हम उसपे ट्रीटमेंट. हमने 10 MBBS, PG, सो इट्स ऑल कंस्टिट्यूट 10 साल की मेहनत. हाउ केन आई इंस्टाग्राम रील ऑफ 1 मिनट 30 सेकंड रिप्लेस दैट नॉलेज. एंड अब सुपर स्पेशलिटी हो रही है, पीपल आर डूइंग MCH. तो आप ये सोचो कि 13-14 साल की पढ़ाई इंस्टाग्राम की रील से अगर हो जाती है. आई हैव सीन पीपल इनफर्टिलिटी वाले, वो किसी ने बता दिया लिट्रोस से है, लिट्रोस खा रही है, 5 महीने के बाद एक मोटी सिस्ट है, अब वो ओवरी भी खराब हो गई है और हमें सिस्ट भी निकालनी पड़ रही है. वी हैव टू ऑपरेट हर, बिकॉज हर चीज के साइड इफेक्ट है. पीपल आर ओनली टेलिंग इफेक्ट, देयर नॉट टेलिंग साइड इफेक्ट. तो प्लीज वाइसली चूज करें, अपने डॉक्टर से बात करें. एक कंसल्टेशन महीने में एक बार का कंसल्टेशन होता है. जो भी है आप अपने पेपर पे लिस्ट बना लो. आई ऑल्सो टेल माई पेशेंट की टू डू लिस्ट आप अपने पेपर पे लेके आओ, जितने क्वेश्चन से मुझसे पूछो कि मैम ये करना है या नहीं करना.
2: नहीं करना.
3: और प्लीज सर्टिफाइड डॉक्टर्स को ही फॉलो करें. यू विल गेट द इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि कौन सर्टिफाइड है कौन नॉन सर्टिफाइड.
2: एब्सोल्युटली. और सोशल मीडिया पे कुछ रील्स और व्यूज के लिए, कुछ लाइक के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं और हम कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स नॉट अ गुड. दूसरी बात, हर मेडिसिन का हर एक कह सकते हैं जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन नहीं बन सकता है.
3: Exactly.
2: मैम हर मेडिसिन हर इंसान के लिए नहीं बनी होती है.
3: बी इंड्यूस विद लिट्रोसोल, बी इंड्यूस विद क्लोमिफेन, बी इंड्यूस विद HMG इंजेक्शन.
2: करेक्ट.
3: वी डिसाइड.
2: एब्सोल्युटली. और
3: शुगर के लिए 1000 दवाएं मार्केट में. वी डिसाइड
2: 100%.
3: एंड दैट इज ऑल्सो की ऐसा नहीं है कि हमने एक दवाई लिख दी तो वही 100% दवाई होगी. नो, वी हैव टू चेंज. अगली पेशेंट आया उसने कुछ कंप्लेन करी तो वी हैव टू चेंज दैट दवाई. अगर इतने सही ChatGPT और ये सभी बता देते तो फिर कोई फायदा ही नहीं था.
2: Got it.
3: एक पेशेंट यूट्रस, वो बेबी अनोमलस बेबी, पूरा अनोमलस, जिसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. उसने ChatGPT पे डाला, ठीक है. वो मेरे पास 26 वीक पे आया. उसका जो लेवल 2 स्कैन था 20-22 हफ्ते का, उस आगे एनोमली जो कि सर्वाइवल मोड पे नहीं था वो बच्चा, तो हमें उसका अबॉर्शन कराना चाहिए था. बट उन्होंने ChatGPT पे डाला. ChatGPT सेड कि कुछ नहीं है कि कंटिन्यू करने का. उन्होंने कंटिन्यू किया. शी केम एट 26 वीक. अल्टीमेटली बेबी की तो प्रोग्नोसिस नहीं थी. वी हैड टू मतलब अबॉर्ट दैट बेबी. बट अगर वो 20-22 हफ्ते पे होता तो मेडिको लीगल चीजें भी कम होती.
2: Absolutely.
3: और प्लस इजी होता. अब जितना बेबी बढ़ जाएगा, प्रोग्नोसिस तो उसकी है ही नहीं. अगर मान लीजिए आप टर्म तक भी पहुंचा दीजिए, उसको पूरे टाइम पे डिलीवर कराइए, अब बच्चा आपके हाथ ही नहीं लगना है. तो फिर ऐसी चीजें ChatGPT से नहीं पूछी जाती, ऐसी चीजें डॉक्टर से पूछी जाती हैं.
2: करेक्ट. तो कहीं ना कहीं हमारा इसका मोटिव भी यही है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं या आपके घर में कोई चीज कर रहा है तो प्लीज ये मत कीजिए, डोंट डू दिस. एक बार अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बहुत जरूरी है मैम. क्योंकि जब तक आप सही लोगों से नहीं मिलेंगे तब तक आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगी.
3: सी, और एक गायनी का ना ऐसा नहीं होता कि आप गए आपको गॉलब्लैडर स्टोन निकलवाना है, काम खत्म हो गया. गायनी से आपको 9 महीने का एक ताल्लुकात बनाना पड़ता है, ताकि जब आपकी डिलीवरी होगी तो शी इज योर होल सोल, क्योंकि उस चैम्बर में वही है. अगर आप फील कनेक्टेड नहीं करते हैं, लाइक आई वॉज देयर इन एन हॉस्पिटल, माई हस्बैंड गॉट शिफ्टेड टू अनदर प्लेस, आई डिडंट चेंज द प्लेस, आई लेट हिम गो कि तुम जाओ, आई विल नॉट, क्योंकि मुझे वाइब्स आ रही थी. आई कुड फील दैट गायनी एज माई ओन. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि पेशेंट्स आप जिसको भी चूज करें, उसको रिलीजियसली फॉलो करें और उससे डिलीवरी के टाइम पे कनेक्टेड रहें, सो दैट देयर इज अ स्मूथ डिलीवरी इन पोस्टपार्टम फेज।
2: एब्सोल्युटली। और आजकल तो सोशल मीडिया है अच्छी चीजों के लिए, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देंगे बैक टू बैक। बट हमारी भी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब पे प्लीज अपनी हेल्थ को लेकर तो बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। मैम थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने इतना टाइम हमारे साथ शेयर किया, हमारे लिसनर्स को तमाम इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सभी को कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। आई एम थैंक्सफुल टू यू इतना टाइम आपने निकाला, बिकॉज यू हैव ऑल्सो वेरी बिजी, शी इज नॉट फ्री भाई, जब भी जाओ मैम बिजी इतना ऑक्यूपाइड रहता है आपका। बट अभी भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कल का बना, फिर उसके बाद आज का बना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम आपका लाइफ स्टाइल भी बहुत बिजी रहता है आई नो, एंड फिर भी आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ पे आए, आपके लिए दिल से थैंक यू मेरी ओर से और एफएम मुरादाबाद की ओर से भी। जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या संदेश आप देंगी, जो लेडीज या जो जेंट्स आपको सुन रहे हैं?
3: यार आई वुड से, भैया मैं लेडीज की डॉक्टर हूँ तो एडवाइस तो सिर्फ लेडीज को ही देनी है,
2: ठीक है।
3: लेकिन जेंट्स को भी एक एडवाइस देनी है कि देखो लेडीज आप इग्नोर मत करो अपने आप को, अपनी बॉडी को इग्नोर मत करो, सिम्टम देगी वो सिग्नल देगी और उसको आप एक्नॉलेज करो और उसके लिए ट्रीटमेंट करो। और जेंट्स को सिर्फ यही संदेश है कि अगर आपसे लेडीज कुछ कह रही है तो डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, ये नहीं कि वो आपका सब्स्टिट्यूट है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों चलेंगे तब गाड़ी अच्छी चलेगी। सो अगर वो कुछ कह रही है तो प्लीज, बहुत सारी फैमिलीज मैंने ऐसा देखा जहां मेल्स ही होते हैं उसे, अरे अरे अरे ठीक है सबको ही होता है, क्या हो गया, ब्लीडिंग ही तो हो रही है, सबको होती है, मेरी मम्मी को भी होती थी। नो प्लीज, जस्ट टेक केयर ऑफ हर, वो आपके घर की अन्नपूर्णा है, उसके बिना घर नहीं है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपसे वो कुछ कह रही है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, उसको भी लगना चाहिए शी इज इम्पोर्टेंट, तो हर किसी का ध्यान वो रख पाएगी, उसको और भी अच्छा लगेगा। आई हैव सीन पेशेंट्स विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आई हैव सीन लेडीज जिनकी शादियां हो गई होती है इनफर्टिलिटी विद डिप्रेशन। तो मेल्स के लिए सिर्फ इतना ही है कि कोई भी प्रॉब्लम उसकी अलग नहीं है, यू बोथ आर गाड़ी के दो पहिए, तो दोनों को एक साथ ही चलना होगा, उसको समझना होगा और उसकी बात आपको सुननी होगी। एंड फीमेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट, सामने आइए और अपनी प्रॉब्लम को प्लीज बताइए।
2: थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल मैसेज, सच अमेजिंग मैसेज, एंड इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए एंड आपने तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करी, एंड आई एम श्योर आप आगे भी आते रहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए।
3: या
2: सो गाइज प्लीज आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम था हेलो डॉक्टर। और आज एशियन हॉस्पिटल से डॉक्टर राशिका गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में थे, मैम से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आपको कैसे लगी ये कॉन्वर्सेशन, डू शेयर योर फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पे, आप आके मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, और हमारा एफएम का ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिल जाएगा। सो प्लीज आइए फॉलो कीजिए। अच्छा मैम आपका इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया पे इतनी देर से बातें कर रही हैं, तो प्लीज डू शेयर योर सोशल मीडिया।
3: आई डोंट हैव मेनी फॉलोअर्स, ऐसा नहीं है, बट आई फील रिलैक्स्ड कि मेरे दिन में जो एक्टिविटी हुई है, आई लाइक बी शेयरिंग विद पीपल, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, नॉट टू मिसगाइड एनीबॉडी, बट ये दिखाने के लिए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो उस 15 मिनट में आप मुझसे नहीं पूछ पाते हो। लाइक कल ही मुझसे कोई पेशेंट पूछ रहा था कि मैम आम खाना होता है प्रेगनेंसी में, सो आई पोस्ट स्मॉल स्मॉल रील्स बस इसीलिए कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाए, आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि हाँ डॉक्टर राशि का कोई है, सो इट इज ओनली टू मेक अ प्रेजेंस इन योर होम, ठीक है। और बाकी
2: एक सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का भी एक जरिया तो है ना मैम सोशल मीडिया पे, आप जैसे लोग ही हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, जैसे मेंटोर, ये चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम से तो बेटर है कि आप सही इंसान को फॉलो करेंगे तो वो डायरेक्शन तो देगा।
3: देयर आर मेनी मिसगाइड्स ऑन सोशल मीडिया ना, तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम ही नहीं रहे।
2: एब्सोल्युटली,
3: तो पीपल विल थिंक, तो अब कोई भी ए बी सी डी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, so it takes a lot of मेहनत। प्लस हम भी गायनेकोलॉजिस्ट विद डिग्री नहीं बने, विद आर एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स, हम कभी हम भी फंस जाते हैं, वी आस्क आवर सीनियर्स, वी आस्क सर्जन की हमें वो लेनी पड़ती है, सो नोबडी इज कम्प्लीट। इट इज ऑलवेज, जैसे हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आई एडमिटेड अ पेशेंट जिसको एक्यूट ब्रेंकेटाइटिस थी, तो एक गैस्ट्रो इन्वॉल्व हुआ उसमें, उसको सीजर डिसऑर्डर था, तो उसमें एक न्यूरो फिजन इन्वॉल्व हुआ, प्लस एक गायनी थी और वो एक AI में चली, तो एक यूरो सर्जन इन्वॉल्व हो गया। तो दिस कैन नॉट बी, एक कोई ले मैन ये सब चीजें नहीं संभाल सकता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो है डॉक्टर्स से ही कनेक्ट करें, उनकी बातों को, आजकल लोगों का एक्चुअली विश्वास कम हो गया है, ठीक है, विश्वास कम भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो ए बी सी डी बीच वाले लोग है ना, दीज पीपल डू रैंडम थिंग्स, बट वो ग्रॉस ये आ जाता है कि डॉक्टर्स ने किया, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली डॉक्टर्स.
2: करेक्ट, राइट. अच्छा मैम, जो लेडीज आपको सुन रही कोई आपसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहती हूँ या आपको विजिट करना चाहती हूँ, कहाँ आप उनको मिल सकते हैं?
3: आई सिट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल, 10 to 4 एवरी डे.
2: ओके,
3: ठीक है. संडेज आर ऑफ डेज.
2: ओके,
3: तो यू कैन कम
2: मंडे टू सैटरडे, मतलब वो आ सकते हैं.
3: एग्जैक्टली, मंडे टू सैटरडे आ सकते हैं. सो वी हैव अ वेरी रीजनेबल प्राइस फॉर नॉर्मल डिलीवरीज, फॉर सिजेरियन सेक्शंस विद अ एक्सपर्ट केयर, तो एनी बॉडी कैन कम एनी टाइम.
2: आपका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आपने बताया?
3: हाँ, आई एम, मुझे मेरा तो डॉक्टर
2: राशिका
3: के नाम से ही है.
2: तो गाइस फॉलो कीजिए, छोटा सा बड़ा अकाउंट तभी होगा जब हम और आप फॉलो करेंगे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन को हमें आगे डिलीवर भी करना चाहिए. वो कहते हैं ना, ईच वन टू कीच वन, मैं हमेशा कहता हूँ आप भी फॉलो करें और को भी कराएं, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक डिलीवर होना बहुत जरूरी. सो अभी के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, वेरी वेरी सून फिर मिलेंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पे. आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. बाय बाय.
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है. संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल 7060022430.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और दोस्तों संडे की बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है। और दोस्तों जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर मुस्कुराना नहीं छोड़ा तो आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों दिल से बस एक ही बात कहिए, ऑल इज वेल, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सनी की सुबह, खुशी आपके साथ है। और दोस्तों वक्त हुआ है 10:17 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और सुबह सुबह ये क्या हुआ भाई, बारिश हुई उसके बाद इतनी गर्मी, ओ माय गॉड। लेकिन थोड़ी सी ही देर की खुशी मिली तो सही ना, सुकून तो मिला। दोस्तों सनी की सुबह, खुशी है आपके साथ और ढेर सारी मस्ती करेंगे आज हम शो में। एंड संडे शो का नाम भी है संडे मॉर्निंग मस्ती। वक्त मैंने आपको बता ही दिया है, 10:18 28 जून की तारीख है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है संडे का। क्या कुछ स्पेशल है आज, सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा। बाकी आप मुझे बताएगा दोस्तों कि आप संडे की सुबह क्या कर रहे हैं। इस वक्त नंबर मैं आपको बताती हूँ, आपको कहाँ पर मैसेज करना है ये तो आपको बताना जरूरी है ना दोस्तों। एंड आप बोलेंगे कि खुशी जी ने मैसेज के लिए तो बोल दिया है लेकिन नंबर बताया नहीं है, तो हम बता देते हैं, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। नंबर हमारा है 9837896896। और मुरादाबाद में क्या कुछ खास चल रहा है वो भी सब आपको पता लगेगा। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और कुछ शानदार ट्रैक मैंने आपके लिए आज की सुबह यहाँ पर प्ले करने का डिसाइड किया है। और ये गाने जो आपके दिल को छू जाएंगे, अब खुश हो जाइए, मुस्कुराइए और इस ब्यूटीफुल ट्रैक का लुफ्त उठाइए। मैं बस लौट कर आती हूँ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान है, अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
3: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना है, ना धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

खूबसूरत प्रोग्राम, जी हाँ, जहाँ पर हम इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, शानदार गाने भी सुनेंगे जो आपके दिन को बनाएंगे बेहतर से बेहतरीन। दोस्तों वक्त हुआ है 10:29 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में।

और दोस्तों अभी हमने कहा था आपसे कि आप मुझे बताइए आज अपने संडे को आप स्पेशल कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हो, अभी तक ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया है आपने, या अभी सोच रहे हो अभी थोड़ा और सो लेता हूँ, आज संडे में है एंड आज ही के दिन तो मुझे सोने का टाइम मिलता है ना, एवरी डे तो जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा सोने दो हाँ, या फिर ओहो आज संडे है यार बहुत सारे काम है, चलो कंप्लीट कर लेते हैं फिर शाम को घूमने भी तो जाना है, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो आप बताओ, आज संडे स्पेशल क्या कर रहे हैं आप लोग। देखो भाई इतना आलस मत करो, फटाफट से मैसेज करो, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और आज क्या कुछ स्पेशल है धीरे धीरे सब आपको पता लगेगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों अभी हमने कहा कि हम बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद में क्या कुछ स्पेशल क्या कुछ खास होने वाला है, तो फटाफट से हम आपको बता देते हैं। डियर श्रोताओं मुरादाबाद के लिए कल का दिन काफी अहम रहने वाला है, जी हाँ 29 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुरादाबाद के दौरे पर आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जी राम वाटिका, भारतीय खेल पार्क और त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर के विकास को नई गति देना और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और श्रोताओं कल मुरादाबाद विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम का गवाह बनने जा रहा है, ऐसे ही हर बड़ी और स्थानीय खबर से आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे, जुड़े रहिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और कुछ शानदार ट्रैक आपके लिए मैंने यहाँ पर चुने हैं, जी हाँ आज की मॉर्निंग जो आपकी सुबह को बनाएंगे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, तो ये गाना सुनिएगा, बस मैं आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: बिल्कुल दोस्तों, हम तो आपसे कहते हैं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए बेहतरीन गाने और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाते रहिए। दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक सही फैसला आपके अपनों का भविष्य सुरक्षित जरूर कर सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और आज 28 जून के अवसर पर बात करते हैं राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस की। बीमा यानी इंश्योरेंस, ये सिर्फ एक कागज का दस्तावेज या पॉलिसी नहीं है दोस्तों, बल्कि मुश्किल समय में आपके परिवार की सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास का मजबूत सहारा है। हम अक्सर अपने घर, गाड़ी या मोबाइल की तो चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचा है? बीमा हमें ये भरोसा देता है कि अगर जीवन में कोई अनहोनी हो जाए तो आर्थिक परेशानियों का बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। चाहे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा या फिर सफल बीमा हो, हर बीमा अपने अपने फसल बीमा हो, हर बीमा अपने अपने तरीके से सुरक्षा की ढाल बनता है। दोस्तों, याद रखिए, बीमा खर्च नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक समझदारी भरा निवेश है। तो आज राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी ज़रूरत के अनुसार सही बीमा नहीं लिया है तो जानकारी ज़रूर लें और सोच समझ कर सही निर्णय करें, क्योंकि ज़िंदगी अनिश्चित हो सकती है, लेकिन आपकी तैयारियां मजबूत होनी चाहिए। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें। दोस्तों, यहां पर आपके खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं, तो मैं उनको भी शामिल करना चाहूंगी। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है आरजे खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं कि बारिश करवाकर आपने बहुत गर्मी करवा दी है। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं विकी सागर जी मुरादाबाद से। सर, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो सोचा था कि आज पूरे दिन बारिश होने वाली है, लेकिन ये बारिश भी ना लुका छुपी खेलती है, बस थोड़ी सी राहत देखी गई है, बदले में इतनी सारी गर्मी देखी गई है ना। लेकिन आप अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और हेल्दी जूस, हेल्दी ड्रिंक्स आप पीते रहिए। एंड जब आप हेल्दी चीज़ें लेंगे तो फिर गर्मी भी पीछे हो जाएगी, गर्मी भी कहेगी ओहो इसके पास तो जाना ही बेकार है, इनके पास तो कोई ना कोई जुगाड़ होता ही है गर्मी से बचने के लिए। तो दोस्तों, गर्मी का आनंद लीजिए। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आरजे खुशी सिस्टर जी को, हमारा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। और ये कहते हैं कि संडे हो या मंडे, हमारे लिए सभी डे स्पेशल होते हैं। हमें सुबह, हम सुबह 5 बजे उठकर खेतों पर हमें जाना पड़ता है अपने पशुओं के लिए चारा लेने, हमारी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और काम भी, सुबह के ताज़ी ताज़ी हवा का भी आनंद मिल जाता है। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना संदेश पहुँचाया। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं, आदित्य कसाना जी हैं, लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्रियंका का आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाती है न्यू मुरादाबाद से। कहती हैं आरजी खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आपने जो गाने प्ले किए आते ही दिल खुश हो गया हमारा। अरे हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, आती हूँ मैं लौटकर कुछ बेहतरीन ट्रैक के उस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, अपने मैसेज भी हमें पहुँचाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है हमारे रेडियो स्टेशन का मैजिकल नंबर जहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है मुझे, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाती रहिए।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये हैं।

मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को करियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे
नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है।
ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने
इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है
और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम

0: कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
8: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
7: पर पापा।
8: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
9: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो का नाम है संडे मॉर्निंग मस्ती। वक्त हुआ है 11:39। जी हाँ, 11:39 स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है और खुशी आपके साथ है। यहाँ पर आपके खूबसूरत मैसेज भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करूँगी। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज हमें पहुँचवाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं, खुशी जी हम रोज सुबह 4 बजे उठकर ड्यूटी जाते हैं, संडे में पूरे दिन आराम करते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आज आप आराम कर रहे हैं। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, समय निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक काम करना ठीक है, लेकिन काम के साथ साथ खुद को भी थोड़ा समय देना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा माइंड भी फ्रेश होता है एंड हम हैप्पी भी फील करते हैं। बाकी दोस्तों, आपको खुशियाँ देने के लिए यहाँ पर खुशी आती है और ऐसे ही मैंने बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर ट्रैक आपके लिए चुने हैं। तो चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं हम। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, ये जो ट्रैक है बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। एंड ये ट्रैक जो हमारी इस समय फीमेल्स हमें सुन रही हैं, जो सुपर गर्ल हमें सुन रही है ना, वो इस ट्रैक को सुनकर खुश हो जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट ये ट्रैक है। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
8: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, कहते हैं ना कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, और अगर हौसला जिंदा हो तो मंजिल कभी दूर नहीं रहती। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, एक 50 वर्ष महिला ने अपने 35 साल पुराने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए फिर से कॉलेज का रुख किया। वर्षों बाद वो परीक्षा देने पहुंची, उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों में अपने सपनों को पूरा करने का उत्साह हर किसी का दिल जीत रहा है। दोस्तों, उन्होंने कहा, आज मेरा एग्जाम है, इतने सालों बाद फिर से परीक्षा हाल हुई, मैं हॉल में बैठने का अनुभव मेरे लिए बेहद खास है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जज्बा है तो समय कभी रुकावट नहीं बनता। तो दोस्तों, अगर आपके भी कुछ सपने अधूरे हैं तो उन्हें सिर्फ इसलिए मत छोड़िए कि उम्र निकल गई है। सपनों को पूरा करने का सबसे सही समय वही होता है जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन हौसला आपकी असली पहचान है। सपने देखिए, उन पर विश्वास रखिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत आज से ही कीजिए। अब मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति। मिलूंगी मैं आपको सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए प्यारे प्यारे गाने, और हाँ, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा दोस्तों, साथ में अपना भी। कीप स्माइलिंग। ये मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर है ना अभी राइट नाउ, बहुत प्यारी लग रही है। बस ऐसे ही खुश रहा कीजिए आप। बाकी मैं मिलूंगी आपको 3 से 5, मैंने बता ही दिया है, कुछ नई बातों के साथ एंड नई स्टोरीज, नई कहानियां, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की स्विंग को बिल्कुल भी मत घुमाइए। खुशी आपको बोलती है बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, संडे का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है एंड गर्मी बहुत ज्यादा है तो बेवजह बाहर मत जाइएगा।

0: मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचे। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त RJ रीना। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही एक चिंता हर घर में बढ़ जाती है, मच्छर, बुखार, कमजोरी और सबसे बड़ा डर मलेरिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी जो सालों से हमारे आसपास है, क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है हमारे अपने गांव-गांव के स्वास्थ्य की अलख जगाने वाले सेहतिया सिंह।
1: धन्यवाद RJ रीना, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों, आज की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहती हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला 8 साल का बच्चा सोनू।
1: हाँ RJ रीना, मैं भी उस बच्चे को जानता हूँ।
0: गर्मी का मौसम था, गांव में पानी जमा था, मच्छर बहुत थे। सोनू को हल्का बुखार आया। परिवार ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा।
1: लेकिन वो साधारण बुखार नहीं था, वो मलेरिया था।
0: 3 दिन बीते, बुखार बढ़ता गया, शरीर कमजोर होता गया। जब अस्पताल ले गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाता तो आज सोनू जिंदा होता।
0: दोस्तों, मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, यह लापरवाही है, जानकारी की कमी की कीमत है। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे मलेरिया के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तय किया था। इस दिन का मकसद सिर्फ एक ही है, पूरी दुनिया को एक साथ लाकर मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए काम करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि मलेरिया सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे मिलकर हराना होगा।
0: भैया, क्या ये सिर्फ जागरूकता के लिए है या इसके पीछे और भी उद्देश्य हैं?
1: नहीं, ये सिर्फ जागरूकता तक सीमित नहीं है। यह दिन सरकारों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक मंच पर लाता है, ताकि हम सब मिलकर मलेरिया को रोकने, उसका इलाज करने और अंत में उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काम कर सके। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लोगों को जानकारी देना, नई रिसर्च साझा करना, स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाना और सरकारों से ये मांग करना कि वे इस बीमारी के खिलाफ लगातार निवेश और प्रयास करें।
0: इस साल की थीम क्या है और इसका क्या मतलब है?
1: इस साल की थीम है ड्राइविंग टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इसका मतलब है कि अब हमारे पास वो तकनीक और वो संसाधन है जिनसे हम मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कब करेंगे, और जवाब है अभी।
0: सेहतिया भैया, जरा आसान भाषा में बताइए, मलेरिया आखिर होता क्या है?
1: देखिए, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो प्लाज़ोडियम नाम के एक परजीवी से होती है। ये परजीवी हमारे शरीर में तब आता है जब एक संक्रमित मादा एन्फोलिज मच्छर हमें काटती है। जब ये मच्छर काटता है तो ये परजीवी हमारे खून में चला जाता है और फिर सीधे हमारे लीवर और खून की कोशिकाओं पर हमला करता है।
0: मतलब यह शरीर के अंदर फैलता रहता है?
1: हाँ, और यही वजह है कि इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द, उल्टी, और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुँच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
0: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियां बांटी गईं, उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार हैं।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ,
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जांच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
1: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
0: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
1: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
0: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
1: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
0: भारत का लक्ष्य क्या है?
1: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
0: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
1: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है।

0: से कार्यक्रम चल रहे हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
0: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
1: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा फैले।
0: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
1: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गाँव में नियमित रूप से इंडोर रेसिड्यूअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
0: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
1: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है, अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है। इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
0: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
0: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
1: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पे जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
0: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
1: यही सबसे खतरनाक बात है, मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए बुखार को हल्के में ना लें।
0: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
1: यही सबसे बड़ी गलती है, जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है और फिर दोबारा उभरती है, और यही कारण है कि दवाओं के प्रति प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसलिए अभी डॉक्टर ने 3 या 7 दिन की दवा दी है, तो उसे पूरा करना बहुत जरूरी है।
0: तो आखिर समाधान क्या है?
1: समाधान बहुत स्पष्ट है, समय पर जांच, सही इलाज, मच्छरों से बचाव और सही जानकारी, और सबसे जरूरी मिलकर काम करना।
0: तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ चाहिए?
1: सबसे बड़ा बदलाव सोच में चाहिए। हमें ये समझना होगा कि बुखार छोटा नहीं होता और इलाज अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब ये सोच हर घर तक पहुंच जाएगी, तब मलेरिया अपने आप खत्म हो जाएगा।
0: सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जहां सही समय पर इलाज से किसी की जान बची हो?
1: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया, वह तुरंत आशा दीदी के पास गई। जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
0: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
1: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
0: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
0: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
1: आज समय आ गया है

0: कि हम सब मिलकर कहें अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
1: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा,
0: अब हम कर सकते हैं
1: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत से लाभ कई। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
2: हाय दीयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और हम बात करने वाले हैं सेहत सही लाभ कई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा अलग है। सच कहूँ तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने बहुत ही सरल लगता है, लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी बताते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आज के शो में।
1: आर्जेरीना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद आपने सारे प्यार और भरोसे के लिए। आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी है कि लग रहा है कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। आर्जेरीना,
0: बात तो सच में बहुत ही बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर है क्या? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है, या मैं पूरी तरह गलत सोच रही हूँ?
1: अरे आर्जेरीना, नहीं नहीं, आप पूरी तरह भी गलत नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चे के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ अपने बच्चे को अपने शरीर से ऐसे लगाकर रखती है जैसे कंगारू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, इसीलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है।
0: अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है बात, लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर अस्पताल में इलाज और मशीनें हैं, तो फिर इस तरह के तरीके की जरूरत क्यों आई?
1: देखिए, यही वो जगह है जहां हम सच्चाई को समझते हैं, और हमें सच्चाई को समझना होगा। हर साल दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से करीब 40 लाख बच्चे अपने जीवन के पहले 4 हफ्तों में ही दुनिया छोड़ जाते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती है और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है। आर्जेरीना,
0: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
1: जी हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है आर्जेरीना, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती है।
0: तो क्या ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इलाज होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
1: हाँ, उसे इनक्यूबेटर कहा जाता है। ये मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्म और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि हर जगह ये उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांव और दूर दराज इलाकों में। और हाँ, जहाँ उपलब्ध होती है वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
0: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया? अगर मशीन भी नहीं है और बच्चों को खास देखभाल चाहिए, तो परिवार क्या करे?
1: यहीं पर कंगारू मदर केयर की उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही किसी और चीज की। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श और उसका प्यार, उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, जो उस माँ के गर्भ से मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा देता है।
0: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है। सेहतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रही है कि ये आखिर संभव कैसे है। क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
1: देखिए आर्जेरीना, यह कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ सीने से लगाकर सीधा रखती है, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसे कंगारू अपने छोटे बच्चों को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है। और इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है बल्कि उसे पूरी तरह सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद ही जरूरी है।
0: ओहो, तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे को गोद में ले लिया जाए वही काफी है?
1: नहीं आर्जेरीना, सिर्फ गोद में लेना ही काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधा शरीर से लगाकर रखा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी से संतुष्ट रहती है और वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और ये एक तरीका बच्चे को वही माहौल देता है जैसे उसे गर्भ में मिलता था।
0: सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई है उनकी मृत्यु दरें कम हो रही हैं और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है, वो ज्यादा स्वस्थ पाए गए हैं। यहाँ तक कि लंबे समय से भी ऐसे बच्चों के शरीर और मानसिक का विकास बेहतर देखा गया है।
0: मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोच कर ही मन भर आता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल। और इस साल का यह संदेश भी है, साइलेंस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है आर्जेरीना।
0: वाह, ये बात दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। अच्छा सेहतिया जी, अब एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
1: जी हाँ आर्जेरीना, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वही इसे भी जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्यकर्ताओं की सलाह जरूर ली जाए।
0: तो फिर इसे सही तरीके से करने का तरीका क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि सभी श्रोताएं समझ सके।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे और उसे कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वह हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
0: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
1: आर्जेरीना, इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है। जो ताकत उसे माँ का दूध दे सकता है वो कोई और नहीं, और सबसे अच्छा पोषण होता है माँ का दूध, जो ताकत भी देता है, बीमारियों से भी बचाता है और उसके विकास में भी मदद करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चे को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है, यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती है, जो सच में काफी खास बात है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ को स्पर्श करके और माँ के दूध से बच्चे की सुरक्षा और पोषण और सुकून तीनों ही मिल जाते हैं।
0: अरे भैया, अब तो मेरा मन और जानने का हो रहा है, पर जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
1: देखिए आर्जेरीना, जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे में बच्चा आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोता है, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शरीर और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
0: ये तो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
1: जी हाँ अर्जेरीना, बिल्कुल पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच

0: बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी बनता है जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि माँ वो अपने बच्चे को अच्छे से उसकी देखभाल कर पा रही है।
1: वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण सी चीज लेकिन असर इतना गहरा। अच्छा सेहतिया भैया, एक बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी भूमिका होती है या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
0: आरजी रीना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन सच तो यह है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध ना हो या थकी हुई हो तो पिता भी अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
1: अच्छा, मतलब पिता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदे दे सकते हैं जो माँ देती है?
0: जी हाँ अर्चरीना, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब भी पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
1: ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
0: देखिए आरजी रीना, बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो ना सिर्फ बच्चे को फायदा होता है बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और परिवार का माहौल सकारात्मकता से भरा होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
1: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखे। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चों को दुगना प्यार और देखभाल मिलता है। लेकिन सेहतिया भैया, हर चीज के साथ कुछ सावधानियाँ भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए तो उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि पूरी तरह बच्चे पर आप फोकस रहें। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है यानी छाती का हिस्सा, वह भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए आरजेरीना।
1: ओहो, और इसे कितने देर तक करना चाहिए? क्या इसका कोई समय होता है?
0: कम से कम आर्जेरीना एक घंटा तो इसे लगातार ही करना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना ही बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटे तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
1: सेहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में थोड़ा झिझक थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
0: बिल्कुल आरजेरीना, यही तो हमारा मकसद है, जानकारियों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सके। और अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी ना खोए।
1: साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर ले। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य और सेवाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त होगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, मिलेंगे फिर आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के 4 लोगों के टॉपिक पे 4 लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
5: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
5: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
5: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
6: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो,
6: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
7: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
5: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और 4 लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। 4 लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
5: वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो 4 लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो 4 लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये 4 लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
5: 4 लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो 4 लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप 4 लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस कर रहे
5: हैं, कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी, हमारी हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की, हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है, मुझे भी ऐसी लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं, मुद्दे की बात यह है, क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
6: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
7: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ।

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है, चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं? मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके,
2: फेस मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब
2: और मैं सुनी ही नहीं हूँ। तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी। और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं। जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा।
1: हाँ,
2: चार लोग
1: अच्छे भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं अब जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: बलपुर ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर।

चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भावना। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। दोस्तों, आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति। दोस्तों, आज हम अपनी धरती की आवाज़ सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़, नदियाँ और हवा लगातार हमसे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे। तो चलिए, आज इस यात्रा में हम अपनी धरती को बेहतर बनाने की बात करेंगे। दोस्तों, पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं है, बल्कि हम सब हैं। हमारी हवा, हमारा पानी, मिट्टी, जीव जंतु, ये सब कुछ। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। क्या आपको गर्मी के दिनों में असहनीय गर्मी महसूस होती है? क्या आपको सांस लेते हुए प्रदूषण महसूस होता है? जरूर होता होगा, क्योंकि आज का हवा पानी सब कुछ बदल चुका है। भारत में वायु प्रदूषण, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन सबसे बड़े मुद्दे हैं। नदियाँ गंदी हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, ये सब इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, क्यों ना इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो हमें प्रकृति से जोड़ता है।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पर्यावरण की पुकार। तो दोस्तों, हम बहुत सोचते हैं कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आपके द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम ही बहुत मायने रखते हैं, और विश्वास करिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। जैसे अगली बार सब्जी लेने जाएं तो घर से कपड़े का थैला जरूर साथ ले जाएं। ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिन में खिड़कियां खोलें और बल्ब का इस्तेमाल कम से कम करें। एक पेड़ अपने पूरे जीवन में कई टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, आपको पता है? तो क्यों ना हम अपनी बालकनी में ही छोटे गमले रखें। दोस्तों, मनुष्यों द्वारा बनाई गई कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे घर, सड़कें और शहर। इन सब को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से ही मिलती है, और पर्यावरण के बहुत सारे घटक हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत, महासागर, नदियां और झीलें, भूमि, चट्टाने और मिट्टी, और वो सभी जीवित प्राणी जो हमारे आसपास हमको नजर आते हैं। दोस्तों, पर्यावरण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, और इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमें काम भी करने होंगे और एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को रोकना होगा, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा, प्लास्टिक का उपयोग एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से मानव जनित गतिविधियां, जैसे वन कटाव, जीवाश्म ईंधन का जलना, अपशिष्ट को जलाना जिम्मेदार है, लेकिन कुछ प्राकृतिक कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम की गंभीर घटनाओं जैसे जंगल में आग लगना, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना इत्यादि, और इन सब की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को लगातार प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा मानव जीवन के साथ साथ पशुधन को भी प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, पशुओं को यह कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। जहरीली गैसें और धुआं पशुओं की सांस लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे उन्हें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। गंदा और रासायनिक पदार्थों वाला पानी पीने से पशु बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। प्लास्टिक और कचरा खाने से पशुओं के पेट में समस्या होती है। गायें और अन्य जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो जाते हैं, और दोस्तों, तेज हवाओं से पशु डर जाते हैं, और ये है ध्वनि प्रदूषण, जिससे उनका व्यवहार बदल जाता है और वे तनाव में भी आ जाते हैं। और रही बात वनों की कटाई का, तो इससे पशुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे उन्हें भोजन और रहने की जगह नहीं मिलती है। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और इस पर समझ विकसित करके साथ मिल के एकजुट होके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना होगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।

0: C-295। यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, ओल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल

0: सगीन और आज आनंद भी आपके साथ रहेगा और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो घर और दफ्तरों की दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं।
1: आज की महिला डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, शिक्षक भी है और अधिकारी भी है। और हमारी बहुत सारी वुमेन ऐसी है जो बिजनेस वुमेन बन के उभर रही है, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे उनकी संघर्षों की एक लंबी कहानी छिपी है।
0: बिल्कुल, तो आइए समझते हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों को और उनके हौसले को सलाम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल।

0: जी, मैंने सोचा हम ही आपका वेलकम बैक कर लेते हैं। सभी सखियों को, भाभियों को और जितने भी पुरुष सुन रहे हैं उन भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दीदी जी, कैसी हैं आप? और प्राची जी, आप बताइए, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और माइक को हिला रही हैं भाई।
1: मैं तो एकदम बढ़िया। और हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं मंच की। हम अपनी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रगल करती हैं पूरे दिन भर, और ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों दोनों को बहुत अच्छे से निभाती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्राची तुमने। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लेडीज ना हर काम में एक्सपर्ट हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चल रही हों, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक हमारी महिला सुबह उठती है तो उसका दिन घर की जिम्मेदारियों से शुरू होता है। परिवार का ध्यान रखना होता है, उन्हें बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, और समय पर ऑफिस पहुंचना, ये सारी चीजें कहाँ आसान होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है
0: मुझे भी नहीं लगता है ये तो बिल्कुल आसान है। स्पेशली आजकल की मम्मियों के लिए तो बहुत टिपिकल है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आजकल तो मम्मियां भी वर्किंग हो गई है ना। बच्चों को संभालना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, उसके बाद ऑफिस भी करना, फिर वापस घर आके घर को भी मेंटेन रखना, तो इट्स नॉट इजी प्राची। आई थिंक, मुझे लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। बट बिल्कुल, कई बार कार्यस्थल पर भी उन्हें खुद को साबित करना होता है कि भैया पुरुषों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है कई बार हमारी महिलाओं को, और साबित उन्हें ये करना होता है कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है। हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए हर एक चुनौती का सामना कर रही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजे आनंद जी आपने। और समाज की सोच भी, आपको पता है कई बार लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो उनके लिए एक तरह से एक हर्डल बन जाता है।
0: आई एग्री।
1: आज भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि हमें लेडीज को घर तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, पर हमारी महिलाएं घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल रही है।
0: नहीं, ये बहुत अच्छी बात है प्राची, और मुझे लगता है अब खैर जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाज, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जहां पर अपना एक रिचुअल्स बना हुआ है, एक रिचुअल्स चलता हुआ आ रहा है कि उनकी घर की बीबी हैं, जो उनके घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर कामकाज करने के लिए नहीं जाती हैं या फिर वो नहीं जाएंगी। और देखिए, हर किसी का अपना अपना एक रिचुअल्स होता है, हर किसी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर घर की महिलाएं कुछ कामकाज करेंगी तो शायद वो अपने फ्यूचर में थोड़ा सा और अच्छा कर पाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगी, और कहीं ना कहीं नया कॉन्ट्रीब्यूट हमारे समाज के लिए कर पाएंगी। क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं इतनी टैलेंटेड होती हैं, इतना उनमें पोटेंशियल होता है। जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो इस तरह से वो परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं।
0: एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है कि वो अपने करियर को और अपने काम को दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: तो मतलब मुझे लगता है कि प्राची, आज हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं महिला मंच में, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अक्सर महिलाओं को जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आज उस पर बात करेंगे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उससे पहले प्राची कुछ कहना चाह रही हो, प्लीज सी समथिंग।
1: आपकी बात सुन के, आपने जो बात कही कि महिलाएं सारा काम अच्छे से कर पा रही हैं, और ये वो इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, जो उन्होंने हौसला अपने अंदर भर के वो चल रही है कि उन्हें रुकना नहीं है। तो उन महिलाओं को सम्मान देते हुए एक शायरी याद आ रही है।
0: वाह वाह।
1: हौसलों की उड़ान रखती हूँ, हर मुश्किल का समाधान रख, मैं नारी हूँ जनाब, अपने भीतर पूरा आसमान रखी हूँ।
0: वेरी नाइस। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। बस इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं महिला मंच, ये है बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और ये है आपकी शहर का अपना प्यारा रेडियो
1: FM मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहो। चलो जी, अभी मिलते हैं एक छोटे सी गाने।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम है महिला मंच। यहाँ पर महिलाओं की राइट्स की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, और आज इस महिला मंच में पुरुषों को भी यहाँ पर बुला के लाया गया है कि आप भी आइए और आप भी जरा बताइए कि काम काजी महिलाओं के लिए, तुम पुरुषों को जो लगता है ना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ईजी होता है हर काम, सिर्फ मर्द को ही मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्यों प्राची?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: देखिए कोई भी काम करना प्राची मुश्किल तो नहीं है, है ना, अगर इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, पोटेंशियल है, अगर उसके इरादे मजबूत हैं तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो बहुत अच्छे से अपने काम को कर पाते हैं, बट वही है सपोर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: हाँ सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर हम उन्हें सपोर्ट देंगे, उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगी।
0: करेक्ट, कामकाजी महिलाओं के सामने एक और चुनौती है, मैं आपको सच बताऊं तो, और ये देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, वो है टाइम मैनेजमेंट यानी समय का संतुलन। वो अपने सपनों को भी जीना चाहती हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसी बीच एक चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा हो जाता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत चैलेंज है।
1: टाइम मैनेजमेंट, वो जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करती हैं, यही चीज जो है उन्हें बहुत ज्यादा खास बनाती है।
0: Correct.
1: क्योंकि वो अपने बहुत खूबसूरत बात कही, वो अपने ऑफिस भी अपना बेस्ट देना चाहती हैं और घर की परिवार की जो उनसे उम्मीदें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहती हैं। तो ये जो बात है इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसी वुमेन, जो भी हमारी ऐसी वुमेन है आसपास, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके काम को।
0: करेक्ट, राइट राइट राइट। कहते हैं दोस्तों थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, कि थक जाती है कभी कभी मगर रुकती नहीं है, आंधियों के सामने भी झुकती नहीं है, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, उसके कदमों में छुपी है एक नई कहानी, वो कामकाजी महिला है जो हार मानती नहीं है मेरे भाई। और बिल्कुल हमें महिलाओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, क्यों प्राची?
1: बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात आपने कही, हमें ऐसी महिलाओं का सम्मान करने की जरूरत है और उन्हें सपोर्ट भी देने की जरूरत है ताकि वे अपने सपनों की उड़ान को और ऊंचा भर सके।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी एक ऊंची उड़ान भरेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी वापस मिलेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: जी दोस्तों, वेलकम बैक है आपका और आप सुन रहे हैं मैको बंच। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं आरजे आनंद।
1: क्या बात है प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महिला मंच में आके मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें अपनी घर की विमेंस की, अपने घर की महिलाओं की, तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाता है। लेकिन आजकल तो खैर प्राची, हमारी घर की विमेंस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे आजकल महिलाओं को बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना आसान बना दिया हमारी घर की महिलाओं के लिए। बहुत सारे द्वार खोल दिए हैं। आप घर से जो लोग अचार बनाते हैं वो घर से ऑनलाइन अपने अचार को सेल्स कर सकती हैं, मतलब अपने अचार को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती हैं। घर बैठे बैठे मार्केट तक, लोगों तक पहुंचा सकती हैं। कोई अच्छी सिलाई करती हैं, कोई अच्छा बुनाई करती हैं, अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं महिलाओं को आसान बना रही हैं, उनके काम को थोड़ा आसान बना रही हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, जब से ये डिजिटल दुनिया का दौर शुरू हुआ है तब से वो अपने काम को, जो भी उनके तरफ पोटेंशियल है, कोई अच्छा डांस करती हैं, कोई अच्छी सिलाई करती हैं, अच्छी बढ़िया बढ़िया
1: कोरियोग्राफी करती हैं, बहुत हाँ, बढ़िया है ना। और कुछ वीमेन्स बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो रेसिपी बनाना सिखा रही है। और कुछ महिलाएं बहुत अच्छी टिप्स देती है, स्किन के घरेलू रेमेडीज बताती है। तो सोशल मीडिया ने, तुम्हारे कहने का मतलब, बहुत ईजी कर दिया उनके टैलेंट को आगे पहुंचाने के लिए ना।
0: बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत ही, कह सकते हैं हम, एक बहुत ही बढ़िया माध्यम बन गया है, ऐसा सशक्त माध्यम जो महिलाओं को बहुत आगे लेकर जा रहा है।
1: कॉटन, मुझे भी लगता है दोस्तों। और आजकल महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी आ गई हैं, क्योंकि महिलाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में आप उठा लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और आजकल महिला हो या पुरुष, हर किसी को अपने लाइफ में, हर किसी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है, अपने सपनों को जीने का राइट है। क्यों प्राची?
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की।
1: चलिए तो एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक एंड वी कम बैक विद यू आनंद एंड प्राची।
0: यस।

0: ही मकसद है देश की रक्षा, उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर?
1: यस सर।
0: इज दैट क्लियर?

0: हो रहा है?
1: सॉरी सर।
0: जंग में गोलियां चलेंगी तुम्हारी, सॉरी नहीं। ऑर्गन।

0: वेलकम बैक है प्राची और आनंद के साथ हैं आप। आज हम लोग महिलाओं की राइट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की उन काम काजी विमेंस की बात कर रहे हैं जो अपने टैलेंट को अब बहुत इजीली लोगों तक पहुंचाती हैं। और आज हम उन सभी टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं जो हमारी विमेंस के लिए बड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जब वो दिल से करती है ना तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। राइट प्राची?
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और डिजिटल मीडिया ने महिलाओं को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खोल दी हैं। वो बड़ी बड़ी वो बिजनेस अपने जो भी उनके अंदर स्किल था जो उन स्किल्स को वो बहुत आगे बढ़ लेकर जा रही हैं और बड़ी क्या बोलते हैं एक तरह से एक बहुत ही बड़ा उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर रही हैं।

0: ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे।
1: एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि हर विमेंस की अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है,
0: बिल्कुल
1: है ना। हमारी मम्मियों को देख लो यार, जिन्होंने कभी बस कलर टीवी पे रंगोली देखी थी, आज वो भी इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, है ना। वेल, मेरी मम्मी तो खैर नहीं करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हमें और डांटती है कि फोन में घुसे रहोगे, इसके बाहर भी निकल के देखोगे। वेल, आजकल की मम्मियां वेल बहुत एक्टिव हो, इतनी अच्छी अच्छी हमारी मॉम्स को रेसिपी, अचार और पापड़ और ना जाने कितनी सारी चीजें आती है, और जब वो सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक सर्कुलेट करती है, तो उन्हें जो खुशी मिलती है ना, उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है।
0: बिल्कुल, जो उनका जो फील था हम बस घर तक समझते थे, मतलब ऐसा एक हमारा लोगों का कहीं ना कहीं परसेप्शन था कि उनका जो फील्ड है वो बस घर की चार दीवारी तक है। पर आज जो मोबाइल ने हमारी मम्मी, जो हमें हमारी आसपास आंटीज है, उनको एक तरह से पूरी तरह से वो एम्पावर्ड कर दिया है। जो भी उनके अंदर स्किल है, भले ही वो बहुत छोटा स्किल हो कि कोई बड़ा स्किल हो, फिलहाल स्किल तो स्किल होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है।
1: मुझे लगता है please continue प्राची।
0: और अपने उस स्किल के दम पर भले उनको मेहंदी आती हो, अपना बिजनेस उन्होंने इस तरह से एस्टेब्लिश किया है, जो नेटवर्क अपने लिए
1: क्रिएट किया है
0: और इससे जो वो अर्न कर रहे हैं, एक तरह से एम्पावर्ड बन रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छे दौर में हम आ गए।
1: करेक्ट। तो दोस्तों, बस आज का यही संदेश है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए चुनौतियां आना कंपल्सरी है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारी लाइफ में चैलेंजेस, चुनौतियां तो आती ही हैं। जिस लाइफ में चैलेंज रहा हूं, वो लाइफ ही किस काम की, क्यों प्राची? तो बस आपको चैलेंजेस का सामना करना है, और कोई लीडी अगर चुनौतियों का सामना कर रही है तो हमें उनका सामना करना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उनके साथ उनके काम को सराहना है, और उनके आत्मविश्वास के साथ उन्हें और ज्यादा पुश करना है कि वो और मोटिवेट हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करता है, और सब उन्हें और इन्हें प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके अपनी बात कहें, अपने स्किल, अपने टैलेंट से पूरे शहर को, पूरी दुनिया को रूबरू कराएं।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ फिलहाल तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। बस यही कहना मैं चाहता हूँ जाते जाते, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ती है, पूरे समाज को, पूरे परिवार को और पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं। राइट प्राची?
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम करते हैं सलाम ऐसी महिलाओं को।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। और बस मैं तो जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना आंटी, अगर आपके अंदर कोई बढ़िया टैलेंट है दीदी, तो उसको बाहर निकालो भाभी जी, सिर्फ किचन तक मत रखो। अगर आप बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे कढ़ी चावल बनाती है, आप बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती है, तो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो। हो सकता है वो छोले भटूरे का रेसिपी किसी और के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
1: आजकल लड़कियां ना ऐसा हो गया है कि मतलब यू नो खाने बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, क्योंकि स्टडी करना है, उनको फ्यूचर ड्रीम पूरे करने, तो यूट्यूब भी उनके लिए हेल्पफुल होता है।
0: हाँ।
1: है ना, तो ऐसे में जो हमारी प्यारी प्यारी भाभी जी हैं, जो हमारी प्यारी प्यारी दीदी जी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है,
0: इतना एक्टिव है,
1: एब्सोल्युटली, तो उनकी रेसिपी देख के आज की जेंजी को, आज की लड़कियों को एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगा यार। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, प्लीज आइए एंड लाइफ में ऐसे ही रॉक मचाती रहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सुनते रहिए
0: FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: चलिए हम लेते हैं आपसे इस प्रोग्राम से इजाजत, और फिर मिलेंगे जल्दी इस नए कार्यक्रम में और कुछ नई बातों के साथ। और ये तो महिला छह महिलाओं का कार्यक्रम, अगर आप आना चाहती हैं, आप कोई अपनी प्यारी बात करना चाहती हैं, कुछ सुनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल आपके लिए भी ये मंच खुला है, क्यों प्राची?
0: आप हमसे जुड़ सकती हैं, हमारे फरमाइशी नंबर 8968968 96 896। एक बार और बता देती हूँ, 9837896896।
1: बिल्कुल, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टैलेंट और अपना नाम, हो सकता है अगली मॉर्निंग आप हमारे साथ स्टेशन पे हो। फिलहाल हम दोनों जाते हैं छोड़ के कुछ खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनते रहिए महिला मंच, जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू
0: FM मुरादाबाद 89.6।
1: बाय बाय
0: बाय।

0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
1: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सस्त्रीकाल जी, हाँ सस्त्रीकाल जी, की हाल चाल दसो मेनू। ओहो, संडे का दिन है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आराम कर रहे हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, रेस्ट कीजिए। संडे का दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल होता है, खुद को थोड़ा समय देने का होता है। एक्चुअली एवरी डे तो हम बिजी होते हैं,

दोस्तों संडे का दिन अपने आप में मैंने कहा ना कि बहुत ही स्पेशल होता है और आज आपके संडे की दोपहर को स्पेशल बनाने के लिए खुशी यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ अपने ब्यूटीफुल मैसेज मुझे पहुंचाते रहिए। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। करेंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। दोस्तों शो का नाम है बिंदास बोल, जहाँ पर आपको बिंदास होकर बातें करनी है आरजे खुशी के साथ। तो फटाफट से मुझे मैसेज कीजिएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैंने आपके लिए यहाँ पर प्ले करना है एंड आप एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों

जो मैंने ट्रैक आज आपके लिए चुना है बहुत ही खूबसूरत सा है, राहत फ़तेह अली खान जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना है जो आपके दिल के करीब है, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रैक चुना है आपके लिए। इसको सुनिएगा, बस मैं आती हूँ अभी कुछ म्यूज़िकल ब्रेक के उस पर।

0: प्यार
1: में जिंदगी। बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
3: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
2: साथ ही छात्र व्यक्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: कॉल 9045912348।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट बिंदास बोल, जहां पर आपको बिंदास होकर मेरे साथ बातें करनी है। और दोस्तों, समय हम आपको बता देते हैं, 3:29 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ।

आजकल हम सोशल मीडिया, न्यूज़ या अपने आसपास की कुछ घटनाएं देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हर रिश्ता झूठा है, हर इंसान स्वार्थी है, लेकिन क्या सच में पूरी दुनिया ऐसी है? जरा एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। अगर कुछ लोग गलत हैं तो उससे कहीं ज़्यादा लोग आज भी अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी और सम्मान के साथ निभा रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि बुराई, जो बुरी खबरें होती हैं ना, वो ज़्यादा हेडलाइन बन जाती हैं, लेकिन अच्छे लोग अक्सर खामोशी से अच्छाई करते रहते हैं। इसीलिए किसी एक इंसान की गलती की सज़ा पूरी इंसानियत को मत दीजिए। हर व्यक्ति अलग होता है, हर रिश्तों की अपनी पहचान होती है एवरीवन। और एक बात हमेशा याद रखिए, कर्म का हिसाब कभी नहीं छूटता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए डर, शक और नफरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। सतर्क रहिए, लेकिन भरोसा करना भी मत छोड़िए। जिंदगी का असली सुकून सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और सच्चे लोगों पर विश्वास रखने में है। तो दोस्तों, मुस्कुराइए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है दोस्तों, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, चाहे तो आप टेक्स्ट मैसेज भी हमें कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और कुछ खूबसूरत गीत भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर

लता मंगेशकर जी, साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज में। म्यूजिक डायरेक्टर है राहुल शर्मा एंड लिरिक्स है आनंद बख्शी जी के। तो चलिए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। बस आप यूं ही मुस्कुराइए और हाँ, अपने मैसेज भी हमें पहुँचा दीजिएगा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। घर पर हैं, कार में हैं, सफर में हैं, या फिर क्या कर रहे हैं आप बताओ अभी राइट नाउ यार। इतना मत सोचो, फटाफट से व्हाट्सएप करो।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और संडे की खूबसूरत सी दोपहर है। वक्त हुआ है 3:42। जी हाँ, 3:42 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है। और श्रोताओं, अब आपको एक ऐसी पहल की जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य से जुड़ी है। रविवार को नागपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की 2 बूंद पिलाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर और बूथों पर पहुंचकर बच्चों को ये जीवन रक्षक दवा दी। इस अभियान में अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, 2 बूंद जिंदगी की सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारे बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका भी है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो ये सुनिश्चित करें कि उसे हर पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की दवा ज़रूर पिलाई जाए। याद रखिए श्रोताओं, आज की छोटी सी सावधानी कल का स्वास्थ्य और मुस्कुराहट। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराता भारत बनती है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है आपके पास। अच्छा श्रोताओं, एक और ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ में पहनी जाने वाली रिस्ट वॉच की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? आपको नहीं मालूम है? देखिए, वॉच तो सब पहनते हैं, लेकिन पता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? नहीं मालूम है ना आपको? ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपका इंतजार कर रहे हैं तो सुनवा देते हैं आपको। उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, हमें आप अपने संदेश भी पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा नंबर है। अपना फ़ोन उठाना है, आपको व्हाट्सएप पर जाना है और नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-896 98-378-96-896। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और सीधा खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। अभी फ़िलहाल बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ, दर्शन रावल की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में ट्रैक सुनिएगा।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपका अपना, जी हाँ, अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है जो आपके सफर को बना रही है और भी ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे वॉच के बारे में। जी हाँ, वॉच पहनने का शौक तो सभी को है, लेकिन बता देते हैं अभी आपने जो ट्रैक एंजॉय किया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज, फ्रॉम द मूवी भूत बंगला से आपने ट्रैक सुना। साथ में निकिता गांधी जी की बहुत ही अमेजिंग, मीठी बोल सकते ना, मधुर वॉइस में ये ट्रैक आपने सुना। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वक्त हुआ है 3:55। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ में पहने जाने वाली रिस्ट वॉच की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों शुरुआत में लोग हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे। उस समय पॉकेट वॉच का ज्यादा चलन था, यानी घड़ी जेब में रखी जाती थी। हाथ में पहनने वाली रिस्ट वॉच का इतिहास साल 1810 से जुड़ा माना जाता है। उस समय मशहूर घड़ी निर्माता ब्रेगे ने नेपल्स की रानी कैरोलाइन म्यूरा के लिए दुनिया की शुरुआती रिस्ट वॉच में से एक बनाई थी। उस दौर में इसे महिलाओं के लिए एक फैशन एक्सेसरी माना जाता था लेकिन पुरुषों में रिस्ट वॉच का चलन 20वीं सदी की शुरुआत में बढ़ा, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। सैनिकों को जब जेब से घड़ी निकालने में समय लगता था, इसीलिए उन्होंने रिस्ट वॉच

पहननी शुरू की दी कर दी थी। इससे समय देखना आसान और तेज हो गया था। युद्ध खत्म होने के बाद ये ट्रेंड आम लोगों के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो गया। आज रिस्ट वॉच सिर्फ समय देखने का साधन नहीं बल्कि स्टाइल, पर्सनैलिटी और प्रोफेशनल लुक भी पहचान बन चुकी है। और दोस्तों अभी और भी बात करने वाले हैं हम घड़ी के बारे में, लेकिन दोस्तों आज के समय में देखिए वॉच सब पहनते हैं लेकिन टाइम अभी भी सब फ़ोन में ही देखते हैं, मोबाइल में ही समय देखते हैं। कितने हमारे श्रोता हैं जो मोबाइल में टाइम देखते हैं एंड कितने ऐसे हमारे श्रोता हैं जो वॉच में टाइम देखते हैं, ज़रा बताइए। अपने संदेश, अपने मैसेज हमें पहुँचाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब इतना मत सोचिए, घड़ी अगर आप भी देख रहे हैं तो वक्त मैं बता देती हूँ, 3:58 हो गए हैं। जी हाँ, 3:58 राइट नाउ। और घड़ी से मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मेरे जहन में आया है, तो मैंने कहा चलिए अब माइंड में ये ट्रैक आ ही गया है तो अपने श्रोताओं को भी सुनवा ही देते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये ट्रैक है, आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे और पुरानी यादों में भी खो जाएंगे। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद लेते हैं, उसके बाद आप सभी से फिर से बातचीत करते हैं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना घुंघरू बांध लिए। मैंने कहा चलिए कुछ नए गाने तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने गानों को भी तड़का लगा देते हैं। अच्छे लगते हैं जब हर तरह के ट्रैक प्ले होते हैं। दोस्तों ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और शो का नाम है बिंदास बोल, जहां पर आप बिंदास होकर बातें कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा मौसम का हाल भी जान लीजिएगा। देश भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है तो कहीं बारिश राहत लेकर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश बिहार समेत 16 राज्यों में बारिश, तेज आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। एंड दिल्ली एनसीआर में भी अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का दौरा जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही ज़रूरी काम हो तो दोस्तों बाहर जाइएगा, अन्यथा घर पर ही रहिएगा। खराब मौसम के दौरान घर के अंदर ही रहिए, खुले मैदान, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचिए। बाहर निकलें तो छाता या रेनकोट साथ रखें और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानियां बरतें। दोस्तों आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और मौसम से जुड़ी ताज़ा जानकारी पर नज़र बनाए रखें। तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको एक और बेहतरीन ट्रैक। यहाँ पर बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और आपके जो संदेश यहाँ पर आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल करूंगी। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी लेकर आती हूँ, आपके ढेर सारी खुशियाँ।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
2: तो आइए AS के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है।
1: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: कॉल 9045912348।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, मम्मी को तो पसंद नहीं होता है कि हम बार बार फ़ोन चलाएं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। मोबाइल को चेक किए बिना हमारे जो दिल को ना सुकून नहीं मिलता है, जब तक हम चेक ना कर लें ना कि क्या नोटिफिकेशन आया है, किसका मैसेज आया है, कौन सी रील पर कितने व्यूज़ आए हैं, जब तक हम सुकून से नहीं बैठते हैं। लेकिन मम्मा हैं जो कि पीछे से डांट लगाती रहती हैं, अब बंद भी करो फोन को, क्या 24 घंटे जब देखो मोबाइल चलाते रहते हो। हाँ दोस्तों, एक्चुअली ना ये एक घर का नहीं सब घर का किस्सा होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बात नहीं मानते मम्मा की। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ़ोन इस्तेमाल करो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपनों को ही भूल जाओ, ठीक है। फ़ोन की रील की लाइफ से ना रियल लाइफ में भी आओ, अपनों को टाइम दो एंड उनके साथ टाइम बिताओ। संडे का इतना खूबसूरत सा दिन है, इवनिंग शुरू हो चुकी है संडे की, एंड अपने आप में स्पेशल होता है यार। कभी कभी तो टाइम मिलता है अपनों के साथ बैठने का, वक्त बिताने का, बातचीत करने का। एवरी डे तो बिजी होते हैं काम के सिलसिले से, स्टडी की वजह से, लेकिन आज तो आपका ऑफ है, तो अपनों के साथ वक्त बिताइए और इस शाम को बनाइए और भी ज़्यादा खूबसूरत।

दोस्तों, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों अपने सोशल दौरे को लेकर चर्चा में है। इस यात्रा के दौरान एक बेहद दिलचस्प और सादगी भरा पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ पारंपरिक अंदाज में ताजा नारियल पानी का स्वाद लिया। दोनों नेता हाथ में नारियल लेकर स्टार से नारियल पानी पीते हुए नजर आए। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस छोटे से पल ने ये संदेश भी दिया है कि सादगी और स्थानीय परंपराओं का सम्मान किसी भी रिश्ते को और मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने विदेशी दौरे के दौरान वहां की संस्कृति, खान पान और परंपराओं से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास भी गहरा होता है। तो श्रोताओं, कभी मौका मिले तो आप भी ताजा नारियल पानी जरूर पीजिएगा। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को हाइड्रेट रखता है और सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। तो आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कीजिए एंड अपनी इवनिंग को बनाइए हैपनिंग इवनिंग, खूबसूरत इवनिंग बनाइएगा। मैं आपको सुनवाती हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि खुशी जी मुझे ये भी प्ले कर दीजिएगा। तो श्रोताओं, सुनिएगा ये प्यारा सा ट्रैक। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। गुड इवनिंग टू माई ऑल लव लिसनर्स।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें
7: 7055070052।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

Hi everyone, good evening to my all lovely listeners. Welcome है आपका आपके अपने favorite show बिंदास बोल में एंड ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी। और दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ गए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ज्योति जी का बिजनौर से, कहती हैं हाय दी, मेरी संडे इवनिंग टू फैमिली के साथ बीत रही है। अभी सब लोग छत पर हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चाय के साथ आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, इससे अच्छी शाम और क्या हो सकती है। अरे वाह ज्योति, क्या बात है, बिजनौर का वेदर लगता है सुहाना है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो मैम गुड इवनिंग, आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत सारी जानकारियाँ भी आप दे रही हैं, गाने भी एक नंबर आप प्ले कर रही हैं, थैंक यू, आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज जो मेरे पास यहाँ पर आया है अमरोहा से, और ये मैसेज पहुँचाती हैं प्रिया जी की, कहती हैं हाय गुड इवनिंग मैम, अभी तो मैं मम्मी जी के साथ रसोई में खाना बनवाने की तैयारी कर रही हूँ और आपका शो सुन रही हूँ। संडे की शाम परिवार के साथ बिताने का अपना ही एक मज़ा है, मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्यारी सी शाम की। वैसे दोस्तों संडे की इवनिंग को आप कैसे स्पेशल बना रहे हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, दोस्तों के साथ आउटिंग या फिर घर पर ही आराम, हमें भी बताइएगा आप क्या कर रहे हैं इस समय राइट नाउ। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं संजू का और ये कहती हैं हाय खुशी दी, कैसी हैं आप, आप सबने कल मिलकर खूब एंजॉय किया। हाँ जी, कल सैटरडे था तो मेरा ऑफ था, हमने क्या चलिए चल लो कुछ खुराफाती करते हैं, और जब छुट्टी होती है तो अपनों के साथ टाइम हम भी स्पेंड करते हैं, अच्छा लगता है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, आप इसको सुनिएगा, बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर, आप यूं ही मुस्कुराइए और इन ट्राई का लुफ्त उठाइए ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

हेलो हाय माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अब टाइम हो गया है आपसे गुड बाय कहने का, जो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ उनकी इवनिंग प्यार और खुशियों से भरी रहे आप सभी की, मैं यही कहना चाहूँगी। और जो अपने फ्रेंड के साथ हर हंसी एक खूबसूरत मेमोरी बन जाए आपकी, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस समय बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं या फिर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं साथ में, जब दोस्त साथ में होते हैं ना तो फिर बोलते हैं ना कि आओ चलो चाय पी लेते हैं। और जब दोस्तों के साथ होते हैं चाय पीने का एक अलग ही आनंद होता है ना दोस्तों। और जो कार में या फिर किसी जर्नी पर हैं, आपके ट्रैवल सेफ रहे और आप अपनी मंजिल तक मुस्कुराते हुए पहुंचें। और जो इस वक्त अकेले हैं, याद रखिए दोस्तों, कभी कभी खुद का साथ भी सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप अकेले बैठे हैं तो स्माइल कीजिए थोड़ा सा एंड खुद को आईने में निहारिए, क्योंकि आज के टाइम में ना हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर आज आपको टाइम मिला है, आप अकेले बैठे हैं, तो थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड कीजिए। और जो आपका पैशन है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो काम करिए, चाहे वो क्रिएट करना हो या फिर रिंगल्स बनाना हो या कॉफी बनाना, जो भी आपको अच्छा लगता हो, या सिंगिंग करना, लेकिन

कुछ भी जो आपकी हॉबीज है जिसमें आपको अच्छा लगता है वो कार्य करो और बाकी खुश रहो। सुनते रहो अपने सिटी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 एंड दोस्तों अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड इवनिंग एवरीवन, बाय बाय। एक मैसेज हमारे पास था, अभी मैंने राइट नाउ चेक किया है एंड ये मैसेज हमें मिला है। गुड इवनिंग मैम, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करते हो आप, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं नईम अली जी लाइन पार मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, लेकिन हाँ ऐसे नहीं जाएंगे, हम आपको एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनवा कर जाएंगे जो हम आप सभी को आज की शाम डेडिकेट करते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एवरीवन।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: हैं। फैमिली ज्यादा आती
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: के
2: द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक
3: व्यंजन, हाँ एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
2: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
3: हाँ हाँ,
2: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
3: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
2: जी,
3: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
2: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
2: जी,
4: जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
2: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
4: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
2: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
4: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
2: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
4: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए, और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
2: करेक्ट करेक्ट।
4: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
4: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
2: बहुत जरूरी है।
4: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
2: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
4: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
2: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे।
4: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
2: आई थिंक
4: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
2: क्या बात है।
4: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
2: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीछे,
4: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
2: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
4: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
2: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चल रही है,
4: देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना, आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होके मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे। मैं तो सीखने आया हूँ।
3: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
2: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
4: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
2: ओके,
4: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
2: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
4: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
2: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
4: PIL
2: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
2: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
4: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
2: ठीक है,
4: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
2: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
4: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
2: करेक्ट,
4: उसको बैठ के
2: समझौता किया जाए, बेसिकली
4: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए।
2: मतलब दोनों पार्टी के बीच,
4: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
2: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर ले, आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
3: जी। हाँ हाँ, बिल्कुल।
2: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
4: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
2: हाँ ठीक है,
4: सुनी होगी ना?
2: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
4: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
2: करेक्ट
4: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका,
2: राइट।
4: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
2: ठीक है,
4: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
2: ओके,
4: ठीक है,
2: अच्छा,
4: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए,
2: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
4: बिल्कुल,
2: तो पब्लिक की हित की बात,
4: पब्लिक की बात होनी चाहिए,
2: करेक्ट।
4: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
2: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
4: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
2: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
4: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
2: पब्लिक के लिए ही
4: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी। सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं
2: राइट,
4: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
2: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की स्कूल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही है,
4: ही बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके सार्वजनिक।
2: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
4: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
2: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
4: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पर कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
3: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
4: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
2: ठीक है,
4: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते उसके लिए। और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर, अच्छा ये बताइए PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
4: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं,
2: ठीक है,
4: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
2: ठीक है,
4: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
4: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेंस्ट आप PIL दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
4: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
2: करेक्ट, अरावली। हाँ,
4: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
2: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रीना और आनंद है जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
4: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
4: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म बताइए।
2: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
4: लिटिगेशन।
2: यार पब्लिक सीखने को मिली है,
4: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
2: जी जी सर,
4: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
2: ओके
4: ठीक है,
2: तो देखिए गाइज अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
3: है, गूगल करके निकाल लेंगे। तो
2: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
3: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
4: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
2: हाँ जी हाँ जी,
4: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
3: क्या बात है।
2: अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीआईएल कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
4: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो पीआईएल का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
2: एब्सोल्युटली 100%
4: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर पीआईएल नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है और इसके

0: माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी पीआईएल के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और पीआईएल भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई पीआईएल जो है दाखिल करी थी, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
1: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में पीआईएल से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पर थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए, हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे, जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक पीआईएल आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता।
1: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
0: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
1: करेक्ट करेक्ट भाई ना,
0: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
1: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
0: हाँ,
1: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
0: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ पीआईएल डेफिनेटली
1: रहती
0: है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
0: देखिए, हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओज हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ एडवोकेट्स है, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफ एम मुरादाबाद 89.6 है,
1: जी जी
0: सुनते रहिए, और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
0: अच्छा,
1: के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा,
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे लेकिन में पता भी
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी।
2: पोटला ठोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता। फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन। इट्स नॉट रेसिपी शो,
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं। आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: AG the Gangster.
1: This side Argentina FM Muradabad 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और मेरे साथ है एडवोकेट डॉक्टर अनुरुद्ध सर है। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे रेडियो में।
2: धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर ये बताइए आप, मतलब मोस्टली मेरे साथ तो ये तीसरा सेशन होगा
2: जी,
1: तो आपको हमारा रेडियो आगे पहले कैसा लगता है?
2: नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं अगर शायद यहाँ पे नहीं आऊँ आपके इनवाइट पे तो मैं मिस करूंगा कुछ।
1: अरे अरे क्या बात है।
2: तो ये तो एक मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके माध्यम से समाज में कुछ अच्छा कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, उनके लीगल राइट्स को बता पा रहा हूँ। और ये आपका प्रोग्राम सबसे बड़ी चीज है, आपने जो सोसाइटी का मुद्दा उठाया आपने।
1: बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी सर।
2: क्योंकि मैंने आज तक इतने प्रोग्राम्स और भी सुने, मैंने रेडियो पे भी सुने और न्यूज में भी, तो लीगल मैटर्स को लेके लोग ज्यादा कोई प्रोग्राम रखते नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं पहले तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम लीगल टॉक्स जो आपने शो रखा है श्रोताओं के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग जो है इस शो के माध्यम से उनकी एक सेवा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस उनके बीच में क्रिएट कर रहे हैं आप।
1: बिल्कुल सर। तो हम अपने सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर आपसे कि सबसे पहले बताइए कि स्टे ऑर्डर होता क्या है?
2: देखिए, बहुत से लोग आपने देखा होगा बातचीत करते हुए कहते हैं कि भाई हमारा जो है एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके और कोर्ट से स्टे हो गया है या कोर्ट से स्टे कराना है, तो ये स्टे क्या चीज होती है? स्टे ऑर्डर जो होता है वो अदालत कोर्ट के द्वारा दिया अस्थायी आदेश होता है जिसके माध्यम से आप किसी कार्य

0: पिटिशनर या प्लेंटिफ होता है जो कि कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करता है, याचिका दायर करता है, और अदालत को लगता है कि इस कार्रवाई से किसी पक्ष को गंभीर नुकसान हो सकता है या न्याय प्रभावित हो सकता है, तब अदालत उस कार्रवाई को अस्थायी से रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर सकती
1: सो
0: है।
1: मेरा अगला क्वेश्चन है सर, क्या कोई भी व्यक्ति अदालत से स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है?
0: हाँ, अगर उसका लीगल कोई जो राइट बनता है या उसका कोई डैमेज होता है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कानूनी विवाद में शामिल है, उसे लगता है कि अगर अधिकारों का नुकसान हो सकता है, तो अदालत के समक्ष अपनी एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करके स्टे ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है?
0: देखिए, स्टे ऑर्डर किसी निर्णय या कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिया जाता है, जबकि इंजेक्शन एक आदेश होता है जिसमें अदालत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने के लिए निर्देश देती है।
1: अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अदालत किसी मामले पर स्टे लगा देती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जब अदालत किसी चीज पे स्टे लगा देती है, तो स्टे लगाने के उस मामले में जुड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से तुरंत रोक दी जाती है, और तब तक आगे उस दिशा में कोई भी कार्रवाई जब तक अदालत नहीं कहती है या अदालत उस आदेश को अपने आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ नहीं कर सकते।
1: हाँ बिल्कुल सर, उस पर जब रोक लग चुकी
0: जब
1: है तो हम
0: रोक लग
1: कुछ कर नहीं
0: चुकी है,
1: सकते।
0: तो कोर्ट का आदेश आपकी मानना आपको मानना भी है और बाध्यता है आपकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्डर मिले उसको हमें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए होता है?
0: नहीं, देखिए, इसमें स्टे ऑर्डर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये कोर्ट के जो है विवेक पे डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि कोर्ट टेम्परेरी स्टे भी देती है, और कुछ केसेस में वो परमानेंट स्टे भी देती है, लेकिन जब स्थितियां सामान्य हो जाती है, पक्षों में एक जजमेंट हो जाता है या जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उस स्टे को कोर्ट खुद ही हटा भी देती है। तो स्टे ऑर्डर समानता स्थायी होता है, यहाँ तब तक लागू होता है जब तक अदालत मामले की अगली सुनवाई में कोई नया आदेश जारी नहीं करती।
1: क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो क्या होता है?
0: देखिए, इससे पहले भी एक हमने अपना सीरीज थी पूरी, एक हमारी लीगल टॉक्स की, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पढ़ा था,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपने
1: सर।
0: पढ़ा होगा। तो अगर कोर्ट ने स्टे दे दिया कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, इसको ऐसे ही रोके रखना है, इस पे कुछ नहीं करना है आप, और आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो एक तरीके से आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो
1: बिल्कुल
0: कोर्ट के
1: बिल्कुल
0: आदेश की जब अवहेलना हो गई, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ गया।
1: बिल्कुल,
0: तो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फिर आपने स्टे ऑर्डर को नहीं माना, आपने कंटेम्प्ट किया, तो आपने दोबारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना करी, तो
1: बिल्कुल
0: ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है, और स्टे ऑर्डर का उल्लंघन है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसमें संबंधित प्रावधान जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं, उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
1: अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा सकते हैं?
0: हाँ, बिल्कुल लगा सकती है। अगर किसी पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या उससे नुकसान हो सकता है, तो वो उच्च अदालत में अपील कर सकता है, और अपील करने पर फैसले पर अगर स्टे हाईकोर्ट दे देती है, तो स्टे निचली अदालत के फैसले पे स्टे भी हो सकता है।
1: क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्टे ऑर्डर के बाद में हटाया भी जा सकता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि स्टे ऑर्डर की अब जरूरत नहीं है या परिस्थितियां बदल गई हैं, तो वह उसे हटाने या संशोधित करने का आदेश भी दे सकती है।
1: क्या बात है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या एक आदेश देना चाहेंगे?
0: बस यही आपको मैं बोलूंगा, सारे जितने भी आपके लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो के, कि आप अपने लीगल राइट्स को जानें, और छोटी छोटी बातों को जो आपके व्यवहार में डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं, हर कहीं ना कहीं हम लोग सड़क पे भी अगर जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं बहुत से लोग अपने लीगल राइट्स को नहीं जानते हैं या राइट जो कानून तोड़ रहे होते हैं। तो आप अगर एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने लीगल राइट्स को जानिए, और समाज में किसी अन्याय को सहन मत करिए, और कोई किसी पे अन्याय करे तो उसकी हेल्प करिए, उसके खिलाफ बोलना सीखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है सर कि अपने हक के लिए बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं बोलते तो फिर मतलब ये होता है कि कुछ भी हो लेकिन अपने हक के लिए तो हमें बोलना ही बोलना।
0: बिल्कुल, आपको बोलना चाहिए, आपको लीगल राइट्स पता होंगे तभी आप बोल पाएंगे, और छोटी छोटी बातों को आप समाज में जो हमारे हनन होता है उसको आप उसका विरोध करिए। अगर आपके लीगल राइट्स का कोई भी हनन करता है, तो आपका अधिकार है कि आप जो है उसको कानून की नॉलेज दें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपके साथ बातें करके मुझे भी बहुत चीजों के बारे में पता चला है, जो कि इसके बारे में तो मुझे सच बताओ तो पता नहीं था।
0: देखिए बहुत लीगल बहुत मैटर जो डीप में है लीगल, जो अगर हम लीगल टॉपिक्स की बात करते हैं।

0: तो हम भी रोज नए नए टॉपिक्स आते हैं, उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये तो इतना ज्ञान का सागर है कि आप जितना पढ़ोगे उतना कम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वही बात है ना, जितने गागर को आप भरोगे उतना ही ज्ञान भरता ही जाएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद। जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही कहा।
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
1: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
0: उनकी सेवा करें,
1: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी है कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
0: अलग रहने की कोशिश करते हैं
1: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
0: बिल्कुल सर। सो अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप एसडीएम कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, डीएम के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
0: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
0: बिल्कुल सर, और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
1: बिल्कुल, जैसा आप बीज
0: वैसा ही फल मिलेगा,
1: फल मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
0: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं, पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है, पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं, रिटन में अगर कंप्लेंट करने को आप पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
0: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
0: पहुंचाना जरूरी है
1: तुरंत।
0: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं, अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
0: बिल्कुल,
1: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
1: हाँ,
0: तभी
1: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
0: बिल्कुल,
1: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
0: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर?
1: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
0: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
1: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है, और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
0: दी जाती है
1: जी।
0: सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
1: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं, जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित और सम्मानित ढंग से कर सके।
0: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
0: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल
0: हो जाता है, मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
1: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेकर शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं, और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
0: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
1: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी भी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
0: अच्छा अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है?
1: हाँ,
0: कुछ गलत
1: तो
0: बोल रहा है
1: आपका, आप किसी को भी आप ऐसे ही अगर आप बोलते हैं बुजुर्गों को, तो खास तौर पे अगर आपने कोई भी ऐसी अपशब्द बोल दी तो पुलिस तुरंत तुरंत कार्रवाई करती है, और खास तौर पे जो है पुलिस के आला अधिकारियों को जुडिशरी की तरफ से भी साफ इंस्ट्रक्शन है कि बुजुर्गों का, बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए अगर कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत तत्काल लीगल एक्शन लिया जाए उसके लिए।
0: बिल्कुल सर, और सर मुझे लगता है बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, हमें किसी के बारे में बोलने का कोई राइट?
1: बिल्कुल, आप किसी को अपशब्द कैसे बोल सकते हैं? आप किसी को कानून कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? तो आपको निश्चित तौर पे जो है सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और जो है बुजुर्गों को तो खास तौर पे आपको जो है उनकी सेवा भाव रखना चाहिए मन के अंदर।
0: बिल्कुल श्रोताओं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। अगर आप सेवा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर हमारा अंत में, यानी कि आप सीनियर सिटीजन और उनके परिवार को क्या संदेश एक देना चाहेंगे?
1: देखिए, मेरा सभी जितने भी आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 एमएसजेड के कम्युनिटी रेडियो के लिसनर्स हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि हम सभी को अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और साथ ही सीनियर सिटीजन को अपने कानूनी अधिकारों की भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भी मिसहैपनिंग हो रही है, तो तत्काल वो उस पर लीगल एक्शन ले सके, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। और जो है बुजुर्गों को खास तौर पे हमें जो है वॉच भी करना चाहिए, क्योंकि उन इस एज में आके उनको हमारी जरूरत पड़ती है, वो शरीर से भी दुर्बल होते हैं, सोच भी उनकी थोड़ी सी, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें बहुत सी जानकारियां मिली कि बुजुर्गों के लिए भी कानून है, मतलब उनके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं मतलब। तो थैंक यू सो मच सर, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत लेती हूँ। श्रोताओ, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर है 9837896896।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहरा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी, उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करत नी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जाएंगी।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे बनारस और ठंडाई, जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगे, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
0: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस तीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुँचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: हाय दया ललन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिस समय जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कारपूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया ये वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
3: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में माँ बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। दिल्ली की सभी झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए युवाओं को तैयार करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी के बीच भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने के कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है।
3: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 135वें कड़ी को आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारियों और भाजपा राष्ट्रीय तथा दिल्ली प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सुना। वहीं दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी सेक्टर 8B5 स्थित वरिष्ठ नागरिक केंद्र में मन की बात कार्यक्रम को नागरिकों के साथ सुना। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि मन की बात केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DMIRC के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई उसकी स्मार्ट डोर टू डोर यात्रा सेवा के लिए प्रदान किया गया है। ये सेवा प्रथम और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रियल टाइम सूचना तथा निर्बाध टिकटिंग को एकीकृत कर यात्रा को अधिक सुगम, सुविधाजनक तथा पर्यावरण अनुकूल बनाती है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये सुविधा दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है, जो AI पर आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इस व्यवस्था के माध्यम से यात्री अपने घर से गंतव्य तक यात्रा की योजना बना सकते हैं और उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसमें घर से मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा, मेट्रो यात्रा तथा मेट्रो स्टेशन से अंतिम गंतव्य तक की यात्रा शामिल है। वहीं यात्रियों को पूरी यात्रा के लिए केवल एकीकृत किराए का भुगतान करना होता है। UITP का परिचालन उत्कृष्टता अवार्ड उन सार्वजनिक परिवहन संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जो दैनिक सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, नवाचार और प्रभाव का परिचय देती हैं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा शकूर बस्ती विधानसभा के वेस्ट एनक्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में सम्मिलित हुई। ये सम्मेलन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विकास और जन कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने विकास और जनहितैषी योजनाओं में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित ये यात्रा आज विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रेरणा के साथ विकसित शालीमार बाग के निर्माण का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथ ही बेहतर सड़कें, सुदृढ़ आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छ परिवेश और जनहित के कार्यों के माध्यम से विकास का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री और विकासपुरी विधानसभा से विधायक पंकज कुमार सिंह ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जन सहभागिता को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक रविवार को स्वच्छता, यमुना सफाई और वृक्षारोपण जैसे जनहित अभियानों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चिल्ला गांव स्थित यमुना घाट पर आयोजित क्लीन दिल्ली विद सीएम स्वच्छता अभियान के दौरान ये घोषणा की। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना नदी दिल्ली की स्मृति, संस्कृति और जीवन धारा है, साथ ही इसे स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
6: ये नदी हमारी अपनी है, यमुना हमारी माँ स्वरूपा है और इसे हमें गंदा नहीं करना है। जब ये सफाई अभियान यहाँ करते हैं तो इससे हजारों लोगों को मैसेज जाता है कि अब तक जो हमने किया कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगाने की जरूरत है, यमुना को हम गंदी नहीं कर सकते।
5: उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक, स्थायी और व्यापक स्तर पर यमुना के पुनर्जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और स्वच्छ घाट उसी संकल्प का सजीव प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए कहा कि समाज में जागरूकता ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पूजा सामग्री, प्लास्टिक, निर्माण मलबा और अन्य कचरे को यमुना में प्रवाहित न करें और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि पहली जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का एक वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 27 जून 2026 तक 235 विभागों और कार्यालयों के 15,748 अधिकारी और कर्मचारी ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई ऑफिस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाएगा, जिससे दिल्ली में सुशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के माध्यम से अब यह आसानी से पता चल जाता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने ई ऑफिस व्यवस्था को 3 अलग अलग श्रेणियों में विकसित किया है। पहली श्रेणी पूर्ण रूप से सरकारी विभाग के लिए, दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, आयोगों, समितियों, स्वायत्त और स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार में मंत्री और भवाना क्षेत्र से विधायक रविंद्र राज सिंह ने आज चांदपुर गांव में HT11KV विद्युत लाइन स्थानांतरण कार्य और चांदपुर कला के से चांदपुर खुर्द लिंक रोड के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्षेत्र में सुरक्षित और सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था, बेहतर संपर्क मार्ग तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को नई मजबूती प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि बवाना विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और जनहितकारी विकास कार्यों को गति देना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह पिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की सभी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में जन सुविधा परिसर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार जो काम 11 साल में नहीं कर पाई, दिल्ली की भाजपा सरकार ने केवल 11 महीने में ही उसकी योजना बनाकर उसे लागू भी कर दिया। श्री पिधूड़ी ने ये बात आज तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े झुग्गी कैंप इंदिरा कल्याण विहार ओखला फेज 1 में 66 लाख रुपए की लागत से बने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर का शिलान्यास करते हुए कही। इस जन सुविधा परिसर में कुल 60 सीटें बनाई गई हैं, जिनमें से 30 पुरुषों के लिए और 30 महिलाओं के लिए। मिदुड़ी ने सबसे बड़े जन सुविधा परिसर के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से इन झुग्गी बस्तियों में वे तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनसे वे सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने जाति पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर प्रेम भाईचारे और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संत कबीरदास के दोहे और शिक्षाएं समाज को आज भी सही दिशा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री ने ये बात आज संत कबीरदास के जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कही।
8: संत कबीरदास जी ने जीवन भर जात पात ऊंच नीच को छोड़ करके प्रेम प्यार समानता के भाव से रहने का संदेश दिया। उनके शिष्य हर समाज के थे, हर धर्म के थे।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार संत कबीर के नाम पर प्रतियोगिताएं और पुरस्कार प्रारंभ करेगी। दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में कल्याणपुरी और मंडावली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से लगभग 1500 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज उमस भरी गर्मी के साथ तेज धूप से लोगों को दिक्कतें हुई। हालांकि दिन ढलते ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर 01123108101237171717 06। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के AI कार्यक्रम की सराहना की। दिल्ली मेट्रो को सार्वजनिक परिवहन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑपरेशनल एक्सीलेंस वर्ग में अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और इस वक्त फिर से हम एक खास मेहमान के साथ स्टूडियो में हमने जो है एंट्री दे दी है, यानी कि मेरी तो एंट्री होगी और मेरे साथ ही साथ एक और बहुत ही कमाल के शख्स हैं, एक बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है जो यहाँ पर आ गई है हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू करने। और ढेर सारी वो अपने साथ पूरा एक पिटारा लेकर आई है, ढेर सारी डायरी लेकर आई है, बहुत सारी उनके पास एक पोर्टल ही है पूरी जिसके अंदर बहुत सारा खजाना है। तो आज कौन है जो खजाने से भरपूर हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में आ चुकी हैं, दस्तक देंगी अपनी आवाज के माध्यम से, आपको आज करेंगी ढेर सारा यू नो एंटरटेनमेंट का जो डोज है वो लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है, बहुत कुछ सुनाने वाली है। एंड शी इज अल्टीमेट, जिन्हें कह सकते हैं एक पैकेट आज आपको हम देने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है मुझे खुद को भी नहीं पता, आई एम वेरी सरप्राइज। बस इतना पता था कोई आने वाला है, लेकिन वो लेकर आने वाला है ये भी नहीं पता था। एंड यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता लगता है कोई गेस्ट को हमें इंटरव्यू करना है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होती है, लेकिन ये जो मैम आई है ना, इनकी कोई डिटेल है ही नहीं हमारे पास। अब जो भी होगा एक्सक्लूसिवली लाइव होगा। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक है मैम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
5: हेलो एवरीवन, मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आनंद आपके साथ आकर।
4: थैंक यू सो मच।
5: आप भी का जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि जुड़े रहिएगा, बहुत दिल पसंद नगमे सुनने को मिलेंगे, कुछ दिल को छू जाने वाली नज़में और बहुत सारी बातें दिल से दिल।
4: क्या बात है, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि आज एक नहीं दो दो एंकर आपको सुनाई दे रहे हैं, दो दो अनाउंसर आपको सुनाई दे रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मैम बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब किसी की एक तो आवाज इतनी अच्छी, ऊपर से उनकी बात इतनी अच्छी, फिर उनका फ्लो इतना बढ़िया, तो वो पूरा एक नो माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दो एंकर यहाँ पे बैठ के आज श्रोताओं को एंटरटेन करने वाले हैं।
5: सो प्रोग्राम का टाइम एक्सीड हो जाने वाला है।
4: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे मुरादाबाद की जनता को हम जानना चाहती है, मुरादाबाद की ऑडियंस की, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं।
5: मैं जो भी कहूंगी वो आप सब भूल जाएंगे, आपको याद क्या रहेगा, मेरी आवाज या जो कुछ मैं सुनाऊंगी। तो मुझे लगता है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारी नज़में, ये जो हैं हमारे दिल से आती हैं और यही हमारी रूह का रिफ्लेक्शन है, आईना है।
4: एब्सोल्युटली।
5: तो बजाय इसके कि मैं कुछ और इधर उधर का इंट्रोडक्शन दूं जो आप भूलें और आगे बढ़ जाएं, आप कविताओं से शुरू करते हैं और उसके जरिए आप मुझे खुद ब खुद जान जाएंगे। और हाँ, अगर आप मुझे दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर मेरी ये आवाज ही मेरी पहचान होगी।
4: एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है मैम ने कर दिया, एक आपको हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया है कि वो क्या करने वाली है, वो तो वही बताएंगी। तो मैम प्लीज, शालिनी मैम, मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, कुछ आपसे ही शुरुआत हो जाए प्रोग्राम की।
5: बिल्कुल। तो एक छोटी सी बात है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। तो उसी के बारे में कुछ लाइनें हैं, एक छोटी सी नज्म है, सुनिए। कि जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा,
4: वाह,
5: जब भी कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, मैं तोड़ू उस खामोशी को मुझसे ये हट कर बैठा, तब तब कोई नज्म किसी नन्हे पौधे सी मुस्काई, तब तब अल्फाजों ने धीरे से ली है अंगड़ाई, जब जब रूह खंगाली मैंने, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, जब जब रूह खंगाली मैंने, छन छन करके लफ्ज गिरे, मुंह पर उंगली रख कर उनको बिठा दिया खामोश पर, चुपके चुपके से, चुपके चुपके से वो सारे बन गए दोस्त हमराज मेरे, फिर नज्म ढली कविता पनपी, बन गए कहानी राज मेरे, बन गए कहानी राज मेरे।
4: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम. आपने जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है अपनी पंक्तियों के साथ, जो आपने अपने आप कुछ किया है, लाजवाब, मतलब ब्यूटीफुल लुक. मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आप क्या स्पेशल करने वाले हो. कहते हैं ना, एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो जब अपनी कलम से लिखता है तो उसकी लिखाई जो है उसके शब्दों में जब आ जाती है तो माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है. वही आज आप कर रहे हो शालिनी जी. थैंक यू सो मच. सो जितने भी लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपको मैम को सुन के डेफिनेटली मजा आने वाला है. ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये तो कह सकते हैं एक डेमो था, ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त. तो मैम सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको हमारे स्टेशन में आके कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है. और स्टेशन में आने से पहले ही मुझसे पूछा जा चुका है, लोगों ने मुझसे पूछा आरजे आनंद के साथ रिकॉर्ड करने वाली हो.
4: क्या बात है, मतलब तो आपको इससे पहले नहीं पता था कि आरजे आनंद भी कोई एफएम पर है?
5: नहीं, मुझे पता था क्योंकि मैंने सुना था.
4: ऑल राइट.
5: लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने फैंस भी हैं आपके.
4: मैम ये तो बस कह सकते हैं ना कि जब हम अच्छा काम करते हैं और जब हम मेहनत करते हैं तो वो लोगों को धीरे धीरे पसंद आने लगता है. जैसे कि अभी आपका काम हमारे लिसनर्स को और हमें पसंद आने वाला है. सो मैम मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कि आपको ये लिखने की क्यूरियोसिटी कैसे आई, कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए?
5: मुझे लगता है कि लिखना मेरे को जीन्स में मिला है. मेरे मम्मी डैडी भी लिटरेरी हैं, माँ मेरी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत भजन लिखती हैं. तो लिखना शायद विरासत में मिला है मुझे, और शायद को हटा देते हैं, डेफिनेटली विरासत में ही मिला है मुझे. और धीरे धीरे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने का शौक भी आपको लिखने की एक कुलाहट देने लगता है.
4: एब्सोल्युटली बिल्कुल.
5: तो पढ़ने के शौक से ही ये शुरू हुआ है, किताबों की खुशबू से ही ये लिखना शुरू हुआ है. और मुझे लगता है कि जब मेरे, जो मैंने अपनी बात इसमें लिखी है कि जब जब कोई एहसास मेरी रूह से सट कर बैठा, एक्चुअली वही बात है.
4: क्या बात
5: कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फील हुआ मैंने उसे लिखा, बस इस तरह लिखना शुरू हुआ है. मैं कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मैं बस मन की बात को लिख पाती.
4: That's very nice. क्योंकि मैम लिखने के लिए भी आपको फील करना पड़ता है, आपको वो इमोशंस को यू नो कहीं ना कहीं अगर आप कागज पे उतार रहे हो तो उससे पहले आपको वो चीज को अपने जहन में लाना पड़ता है ना. जब तक आप उस फील को फील नहीं करोगे, उस मोमेंट को फील नहीं करोगे, तब तक आप वो लिख ही नहीं पाओगे, है ना. तो इमोशन
5: शब्दों में
4: जान नहीं आएगी, जाएंगी नहीं. एग्जैक्टली. तो वो चीज तो कहीं ना कहीं हर कोई नहीं कर पाता है ना.
5: हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा.
4: हाँ, एग्जैक्टली
5: कह सकते हैं आप.
4: ट्रू, नाइस. वैसे जो ब्यूटीफुल आपकी आवाज है, आप खुद भी इतने ब्यूटीफुल है, नो डाउट.
5: सो
4: थोड़ा सा मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूंगा कि मतलब प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? आप
5: एजुकेशन आपका, सच बताऊं तो वो सब करती हूँ जिसका डेजिग्नेशन होता है कुछ नहीं.
4: ओ माई गॉड,
5: कहते हैं ना कुछ नहीं करते हैं टाइप. लेकिन मैं बहुत कुछ करती हूँ. वैसे मैं होम मेकर हूँ. अब मैं काफी सालों तक फोटो एडिटिंग्स में काम करती रही हूँ, वीडियो एडिटिंग्स में भी काम किया है. और अब मैं होम मेकर हूँ, तो मैं 24 घंटे बाद 28 घंटे का काम करना चाहती हूँ. बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बुक रिव्यूज करती हूँ, पोएट्री करती हूँ, और ट्रैवल की शौकीन हूँ, जो आपको मेरी कविताओं में भी मिलेगा, पता चल जाएगा.
4: क्या बात
5: तो
4: है, बहुत ही बढ़िया.
5: करती हूँ,
4: बहुत ही बढ़िया. और जब आप नए नए जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपको नया नया कंटेंट भी मिलता है.
5: बिल्कुल,
4: है ना.
5: लिखने की प्रेरणा, और मैं नेचर लवर हूँ तो हमेशा प्रकृति के करीब जाकर वो प्रेरणा लिखने का, जो अंदर से एक मन, अंदर से एक फील, वो सब अपने आप आ जाती है.
4: That's very nice. शालिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और एक स्पेशल सेशन में मैम आई हैं, बहुत सारी चीजें लेकर पूरी प्रिपरेशन के साथ आज वो आई हैं आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने के लिए. मैम आगे बढ़ेंगे, क्या स्पेशल सुनाना चाहेंगी इसी बीच आप?
5: तो हम,
4: आपने अपना तारुफ तो करा दिया. यस हाँ, बचपन. एग्जैक्टली, मतलब फ्लैश बैक में लेके जाएंगे आज आप.
5: तो बचपन सभी के दिल के करीब होता है. तो एक छोटी सी नज्म सुनाती हूँ जो आपको बचपन की याद दिला देगी,
4: मतलब फ्लैश बैक में ले जाएगी आज हम सभी को. श्योर मैम.
5: कि बारिश अब भी बचपन साथ लाती है, बारिश अब भी बचपन साथ लाती है. वो कागज की कश्तियां जो पानी में उतारते थे, वो भीगती थी, डगमगाती थी, डूब जाती थी, फिर दूसरी बनाते थे ये सोचकर इस बार तो तैरी जाएगी. वो भी डूब जाती थी, बनाते थे कभी उससे बड़ी, कभी छोटी, कभी कागज बदलते थे, पर वो कोशिशें कम नहीं होती थी कभी. वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा. वो कश्ती दूर तक जाएगी ये उम्मीद कायम रही जब तक बचपन रहा. बड़े क्या, वो खूबसूरत कश्तियां जिंदगी से चली गईं। बना तो भी सकते हैं, जाहिर है बना तो भी सकते हैं, पर वो जज्बा कहाँ से लाएंगे?
3: क्या
5: ये तैरेंगे,
3: तैरेंगे, ट्रू।
5: वो जज्बा ही तो था खूबसूरत, वो कश्तियां नहीं थी, वो जज्बा ही था जो बचपन में तैरता था और बड़े होकर डुबो दिया हमने।
3: अरे बाप रे, मतलब मैम ये मुझे लग रहा है कि आपने ना एकदम असलियत से रूबरू करा दिया है हमें।
5: याद आ गया ना,
3: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब एकदम सच्चाई का आईना दिखा दिया आपकी छोटी सी चार लाइनों ने। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही धमाकेदार आपने सुनाया। अच्छा, ये आप खुद से लिखते हैं?
5: जी, ये सब मेरी खुद,
3: ये आपकी खुद की लिखी हुई है
5: जी।
3: क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लिखने के लिए सबसे बड़ा जज्बा तो आपका यही होना चाहिए कि भाई आप पहले उस चीज को जाओ, उस चीज को देखो, उस चीज में घुसो, उसके बाद फिर उसे पन्नों पे उतारो। एंड आई थिंक इट्स नॉट इजी मैम।
5: नहीं तो पर आपने जिया है,
3: हाँ,
5: उसे जो आपने देखा है, जिया है, जो आप महसूस कर सकते हो वो आप पन्नों पे उतार सकते हो।
3: एब्सोल्युटली,
5: अगर आपने जीते समय महसूस नहीं किया, हाँ, अगर आप डूबे नहीं ऊपर ऊपर से निकल गए, हाँ, तो फिर लिखना मुश्किल है।
3: लिखना मुश्किल है, करेक्ट करेक्ट, वही वही। शालिनी जी के साथ ढेर सारी बातचीत जो है चल रही है आज इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सेशन चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैम बातचीत के बीच बीच में अगर कुछ अच्छे गीत संगीत हो जाए तो प्रोग्राम और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कौन सा गीत है जो आपको सुनवाया जाए?
5: बारिश से मुझे वो याद आ गया, रिम झिम रिम झिम, रुम झुम झुम झुम।
3: वाओ।

0: ब्यूटीफुल।
1: भीगी भीगी रुत
0: भीगी
1: में तुम हम तुम चलते हैं, ये सुनवा सकते।
0: क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैम ने गाया, बहुत मजा आ रहा है। आप तो मुझे लग रहा है कि मल्टी टैलेंटेड है, अच्छा बोल भी रहे हैं, अच्छा लिख भी रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं भाई साहब। बहुत मजा आ रहा है, नो डाउट कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा एवरीबॉडी। फिलहाल गाने की बात चली तो पहले ही गाना सुनेंगे, उसके बाद वापस मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन। इस गाने के बाद वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना था यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस गाने को सुनकर ना मुझे तो एकदम वो बारिश वाला वेदर याद आ गया। इतना ब्यूटीफुल ट्रैक जिसको सुनते ही हम फ्लैश बैक में चले गए। वेल आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ शालिनी मैम मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आपके साथ ढेर सारी बातचीत कर रही है और लिखकर लाई है अपने दिल के जज्बात, जो सीधा आप तक डिलीवर कर रही है हमारे स्टेशन के माध्यम से। आई एम सो ग्लैड मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना मजा आ रहा है मुझे स्टेशन को एंजॉय करते हुए आपके साथ। मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैम, अच्छा मैं आपकी कविताओं के बीच में और आपकी शेरो शायरी जो आप रहे हो, बहुत तो है ही अल्टीमेट, नो डाउट। इसी बीच मैं, मेरी खुद की एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आपने कई बारी देखा होगा कि आजकल जेंजी को ना ऐसे एकदम से हम किसी को देखते हैं फर्स्ट टाइम में, हमें ऐसा लगता है कि भैया हमें तो प्यार ही हो गया। मतलब आई डोंट नो लव है या फिर अट्रैक्शन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में तो प्यार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में तो नहीं है। जैसे वो अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट होना। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम में किसी को देखते हैं कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी, आजकल के जेंजी का है ही ये हाल। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, उसको प्यार हो गया है, तो उसके लिए कुछ है आपके पास?
1: बिल्कुल, और ये जेंजी का नहीं है, ये तो हमेशा से लव एट फर्स्ट साइट तो शायद हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ,
0: अरे वाह।
1: तो अगर आप पहले देखें तो सॉरी, तो अक्सर ऐसा भी होता था कि हमने कुछ ऐसा देखा कि हमें अट्रैक्शन हो गया, या हमें ऐसा फील हो रहा है कि बस यही तो चाहिए था, और हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है अभी।
0: ठीक है,
1: तो
0: बस हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं।
1: हाँ, तो आप सुनिए, आप इमेजिन करिए, आंख बंद करिए और मेरे लाइनों के साथ साथ चलिए।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है,
1: है। तो कहा है कि पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहली बार देखा उसे नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए, गुलाबी सी साड़ी शायद हाथ में थाम रखी थी, मखमली पांव झांक रहे थे, एक पांव में काले धागे में पिरोए काले मोती पड़े थे, नजर से बचाने के लिए होंगे शायद। बार बार भीड़ में गुम जाती थी वो, मैं उन्हीं पांव का पीछा करता फिर खोज लेता था उसे। उसके पांव मेरी आंखें, मेरी आंखें उसके पांव, लुका छिपी खेल रहे थे जैसे। गुम हो गई वो, गुम हो गई वो, और मैं चेहरा ना देख पाया था, बस वो पांव आंखों में लिए घर लौट आया था। रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, रात भर वो पांव जहन में चहलकदमी करते रहे, सुबह होते ही फिर वही मंदिर की सीढ़ियां और वही मैं। हर रोज सुबह शाम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, दुआएं मांगने लगा हूं, बंदगी सीखने लगा हूं। इसे मोहब्बत कहते हैं या इबादत?
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मैम। क्या खूब आपने लिखा, मजा आ गया इसको सुनकर, मजा आ गया। वाकई मैं श्योर दोस्तों आपको भी डेफिनेटली मजा आ ही रहा होगा। कॉन्वर्सेशन इतनी अमेजिंग चल रही है, बातें इतनी ब्यूटीफुल हो रही है, तो ऑफकोर्स मजा तो आना बनता है। वेल आगे बढ़ते हुए मैम आपका फिर से वेलकम बैक करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप हमारे लिसनर्स को तमाम सारी अपनी लिखी हुई बातों से रूबरू करा रही है, वो ताजा तरीन बेहतरीन बातें जो है आप हमें वापस याद दिला रही है, जो छोड़ के आ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पे, जो आज अपनी उन यादों में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरत बात होती है इन कविताओं की, इन पोइट्रीज की, कि ये हमें फिर से जिंदा कर देती हैं। अगर हमारी कुछ चीज हमें खो भी गई है ना, मिस हो भी गई, अगर हम इनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये खूबसूरत एहसास है, और जो आज वो एहसास को आप जगाने के लिए यहाँ आ गई है,
1: थैंक यू सो मच,
0: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि गाइज इस तरह का टैलेंट हर किसी में नहीं होता है, और जिसमें होता है फिर तो बल्ले बल्ले। और यार मैम आपका गॉड गिफ्ट है आई थिंक।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बस आपने इसको एनहांस कर दिया है,
1: इसको एनहांस कर दिया है। बिल्कुल, मैंने कहीं कुछ सीखा नहीं है, और बचपन से स्टेज पे मेरी मम्मी मुझे भेजती रही कुछ कुछ चीजें सिखा के, मुझे कविता पढ़ना सिखाया, मुझे बाकी चीजें डिबेट सिखाई, और उसके बाद वो चीज मैं शायद पॉलिश करती रही, उन चीजों को वक्त देती रही, और जिसमें आपका दिल लगता है ना, True. वो चीज अपने आप पॉलिश हो जाती
0: Absolutely.
1: है.
0: एब्सोल्युटली. जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, पैशनेट होते हो ना, तो फिर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर आने लगता
1: बिल्कुल.
0: है. और आप फिर उसमें आपको ये भी नहीं लगेगा मैं इससे बोर हो रहा हूँ, आप इंजॉय करोगे, इंजॉय लॉट. आप जितना ज्यादा उसमें घुसोगे उतना आपको मजा आएगा. और जिस चीज में आपको मजा आता है ना, वही चीज अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो फिर भी मजा आता है.
1: बिल्कुल,
0: है ना.
1: और जैसे कि अभी आपने कहा था कि कविताएं जैसे पीछे ले जाती हैं कविताएं, तो मैंने भी ऐसे लिखा था कि कविताएं.
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर. 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद.
2: कॉल 8826213131.
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स. यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट.
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है.
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद. मोबाइल नंबर 7055070552.
0: हेलो जी, कैसे हालचाल है? नमस्कार. आप
1: अपने पते तक पहुँच नहीं पाए.
0: करेक्ट.
1: तो प्रेम हो या नाराजगी हो, इजहार हो, मनोहार हो, समर्पण हो, दर्द हो या टीस हो, या आक्रोश हो, इन सब को किसी ना किसी पते पर पहुंचना था.
0: करेक्ट.
1: लेकिन ये रास्ते में खो गए. अगर ये सब अपने पते पर पहुंच जाते तो इनका सफर खत्म हो जाता.
0: खत्म हो जाता.
1: और वजूद भी.
0: एब्सोल्युटली.
1: इन्हें कोई मोड़ मार के हवाई जहाज बना के उड़ा देता. कोई इसमें चना मुरमुरा खा लेता. कहीं ये कूड़ेदान में जाती और कहीं अलाव में जल गई हो. हो सकता है कुछ वक्त के लिए इन चिट्ठियों को संभाल लिया होता किसी ने, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली इनका वजूद खत्म होना ही था.
0: होना ही था.
1: तो वो चिट्ठियां जो किसी पते पर पहुंच नहीं पाई, वो कविताएं हो गई. और ये कविताएं आसमान में लटके सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं, स्याह रात में लाखों जुगनुओं की तरह जगमगा रही हैं, महक रही हैं जैसे हिरन में कस्तूरी महकती है, चहक रही हैं जैसे भोर में चिड़ियां चहकती हैं. महफिलों की शान और तन्हाइयों की जान हो गई ये कविताएं, लाखों दिलों की मेहमान हो गई.
0: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बात है. लाखों दिलों की
1: मेहमान
0: हो गई, क्या बात है. बहुत बढ़िया. और आज की हमारी जो मेहमान है वो शालिनी जी हैं, और जो हमारे साथ लगातार बहुत अच्छी अच्छी बातचीत कर रही हैं. और देखो ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा. आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है. बहुत मजा आ रहा है. टू बी वेरी मैम, बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है जब हम टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 20 मिनट कैसे हो गए. अनबिलीवेबल. इस कॉन्वर्सेशन को चलते चलते प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा. थोड़े से कुछ और मैम के किस्से और कुछ और बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जो है पूछेंगे मैम. बट उससे पहले मैम, हम सोच रहे हैं कि ये सब बीच में एक और एंटरटेनमेंट का अगर तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा. एक और खूबसूरत सा गीत जो आप चाहती हैं हमारे शो को एक बार तो ये सुनवा देना चाहिए. आनंद, मजा आ जाएगा.
1: तो वो सुनाते हैं

0: मुझको रंग देना रंग देना रंग देना।
1: ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। चलो बिना किसी तरीके इस गाने को सुनते हैं, उसके बाद वापस मिलते हैं।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अभी एंजॉय किया। आज का सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी मौजूद है हमारे स्टूडियो में। यस, आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं। ऑफकोर्स उनकी बातें आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। आई एम श्योर बहुत सारी उनकी कविताएं आपको फ्लैश बैक में भी लेकर चली गई होंगी। आज हमारे साथ शालिनी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, ढेर सारी बातचीत वो कर रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ उनसे पूछना चाहूँगा, मैम आप मुरादाबाद में कहाँ से बिलोंग करती हैं? थोड़ा मैं भी तो जानूँ आपके बारे में, थोड़ा सा ये बताइए आप।
1: मैं ओरिजिनली बरेली से हूँ।
0: अच्छा, ओके।
1: और रह रही हूँ यहाँ लगभग 20 साल से,
0: मुरादाबाद
1: में ही हूँ और पैसिफिक स्टार होम में रहती हूँ।
0: अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और आज फिलहाल वो रेडियो की स्टेशन में आ गई हैं, रेडियो की दुनिया में आ गई हैं, जहाँ पर अपनी लिखी हुई वो सारी बातें आज आप तक पहुँचा रही हूँ।
1: शायद टू बी हियर,
0: थैंक यू मैम। एंड आई डोंट नो कि इनकी सारी बातें हम आप तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, बट मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बचा के रखनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर वापस काम आ सके। दोबारा भी तो बुलाना है ना फिर उनको मुझे। सो वेल, अभी मैम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी कविता या कोई चार पंक्तियां अगर आप हमारे नेचर के लिए, पहाड़ों के लिए करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग की, तो अगर हम ट्रैवलिंग में जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और वो अगर माउंटेन वाला एरिया मिल जाए तो मजा आ जाता है,
1: माइंड
0: ब्लोइंग। मतलब
1: एक नंबर की घुमक्कड़।
0: अरे क्या बात है,
1: सुनाती हूँ जो मैंने अपनी पहाड़ की घुमक्कड़ी के दौरान महसूस किया है वो। और अब अगर सुनने वाले भी आंख बंद करेंगे तो मुरादाबाद में
0: जाएंगे,
1: पहाड़ पर
0: पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग फील करते हैं,
1: बिल्कुल
0: पहुंचते हैं पहाड़ों की दुनिया में।
1: इन पहाड़ों में बंजारापन मेरे लिए सुकून की परिभाषा है। ये सूरज से पहले अरुणा का आना, जैसे प्रियतम के लिए रेड कार्पेट बिछाना, हवाओं में बहता चिड़ियों का संगीत और बादलों का मखमली शामियाना, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और कदमों का खुद बखुद सध के चलते जाना, सुबह जैसे अंगड़ाई लेकर जाग रही हो और मुझे अकेला पाकर कविता का मुझसे बतियाते हुए साथ चलते आना, घरों से उठते धुएं का सर्द मौसम के साथ मिलकर हवा में तस्वीरें बनाना और मेरा इस सारे आलम में खुद के भीतर बेआवाज उतर जाना, सुबह का दोपहर को लांग कर बेसब्र हो शाम से मिलने चले आना और शाम का खुद आसमान में रंग बनकर बिखर जाना, आसमां का सारे रंगों के साथ नदी में डुबकी लगाना और नदी का लहराते बलखाते सारी धरा को धानी ढंग जाना, कुदरत की गलवैया डाले कविता का सारे रंगों के साथ मेरे मन समा जाना और मेरा दुआ करना कि यूं ही फूले फले ये पहाड़ ये नजारे, कि बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना।
0: क्या बात है, बस होता रहे पहाड़ों में आना जाना। बिल्कुल, और ये आना जाना तो बिल्कुल लगा रहेगा मेरे दोस्त। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो बस आप मैम की चार पंक्तियां जरूर याद कर लीजिएगा। शायद आप जब जब जाएंगे तो आपको ये पंक्तियां याद आती रहेंगी। एंड मुझे लगता है कि इन पंक्तियों से तो सच में हम सब पहाड़ों में पहुंच ही गए मैम। आज बहुत मजा आ गया और आपकी इन लाइनों से मुझे लगता है कि वाकई में आप एक नंबर की घुमक्कड़ तो
1: हैं,
0: इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लिखा है ना वो बिल्कुल हमें ओरिजिनल फील दे रहा था, लग रहा था कि हम वहां पहुंच चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी जरूर मजा आया होगा। सो मैम, अब चलते चलते कोई प्यारी सी चार पंक्तियों के माध्यम से कोई एक सोशल मैसेज, कुछ अच्छा विचार जो आप रखना चाहें हमारे लिसनर्स को, जो आप अपने कविताओं के कहानियों के माध्यम से बताना चाहें, कोई संदेश आप देना चाहें इस प्रोग्राम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो एक छोटी सी बात कहूं।

0: करूंगी और ये है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
1: ब्यूटीफुल,
0: सुनिए प्लीज। रूह जब आजाद हो, रूह जब आजाद हो जिस्म के इस पहरन से, ये बूटी, ये झालर, ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने, ये गोटा किनारे, ये सब हमारी आंखें, हमारे दिल, हमारी किडनी के बारे में है। ये बूटी, ये झालर, ये सलमा सितारे, ये मोती नगीने, ये गोटा किनारे, जलने ना पाए छुटा लेना सारे, कि इनके लिए हैं लंबी कतारें। किसी का दिल इंतजार में दिल के हमारे, और किसी की नजर के इंतजार में खुद नजारे। क्यों मिट्टी मिलाएं, क्यों मिट्टी मिलाएं, लुटो ये सारे कि जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे,
1: जीते रहेंगे तुम्हारे हमारे। सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके सच में बहुत मजा आया। एंड आई एम श्योर ये जितने लोगों ने सुना होगा उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा डेफिनेटली।
0: थैंक यू सो मच,
1: बातें यहाँ रखिए।
0: यस, बहुत अच्छा,
1: अपने लिसनर्स के साथ आपको भी बातचीत करके डेफिनेटली मजा आया होगा, क्योंकि आज वो लिसनर मेरे नहीं आपके भी हो गए, क्योंकि इतनी मनमोहक वाली आवाज है आपकी, इतनी अच्छी आप बोल रहे हैं, तो यू नो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एक कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा थॉट या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है आप कहना चाहे मुरादाबादी से तमाम लोग आपको सुन रहे हैं?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, चाहे वो लिखना है, चाहे वो गाने हैं, या कुछ भी जो भी क्रिएटिव आर्ट हैं, वो आपको एक जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका सिखाते हैं। तो लगे रहिए इसमें और एंजॉय करते रहिए।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा। एंड जल्दी फिर आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन बातों के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।
0: थैंक यू सो मच।
1: एंड गाइज, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। छोड़ के जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग ट्रैक के साथ, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
6: प्रकृति से खुशियों की लहर।
7: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
9: तुम मजाक कर रही हो या?
10: खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
11: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
10: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
11: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
10: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमेनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
11: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
10: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
11: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
10: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
9: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
10: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
12: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
10: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
13: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
10: महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद आज मुझे आने का अवसर मिला यहाँ पर। जी दोस्तों, संडे की खूबसूरत सी इवनिंग है और मैं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं गीत आपके नाम से शो। आज की ये संडे नाइट कुछ अलग ही एहसास लेकर आई है। आसमान में चांद अपनी पूरी रौनक बिखेर रहा है क्योंकि कल पूर्णिमा है और हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति किसी मीठे से गीत की धुन पर मुस्कुरा रही हो। तो आज आप इस वक्त अपनी फैमिली के साथ सफर में हैं, अपनी बालकनी में बैठकर चांद को निहार रहे हैं या फिर अपने कमरे में सुकून के कुछ पल बिताते हुए हमें सुन रहे हैं, तो दिल से आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं एक घंटे तक आपके साथ रहने वाली हूँ। खूबसूरत बातों के साथ, खूबसूरत एहसासों के साथ, आपकी पसंद के बेहतरीन गीतों के साथ बनाएंगे आपकी शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत। तो दोस्तों, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल शो में। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं? ओहो हो भाई, खाना बनाना गर्मी में अपने आप में बहुत कंपटीशन है, किसी कंपटीशन से कम नहीं है। लाइक किचन में इतनी गर्मी लगती है खाना बनाते वक्त ना, वो हाल तो लड़कियां ही जानती हैं जो बेचारी बनाती हैं। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि मैम हम भी अकेले रहते हैं बाहर और हमें भी बनाना पड़ता है खाना। तो सर आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बट कोई नहीं, अब खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा ना। चलो मैं अपनी बातों को अभी यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैंने आपके लिए यहाँ पर चुना है, तो इस ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और मैं लौट कर आती हूँ। बस आप मुझे फोन लगाना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 9837896896। गुड इवनिंग मुरादाबाद।
1: ठीक है, मैं गाता हूँ।

0: एवरीवन, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना जुबिन नौटियाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और दोस्तों, आपके लिए चंद लाइनें हैं कि चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, और जिंदगी से प्यारे हैं आप सब हमारे लिसनर्स। एंड आपका वेलकम आरजी खुशी करती है। देखिए, संडे की खूबसूरत सी इवनिंग है एंड आसमान में चांद भी बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है। अभी तक नहीं देखा था आपने, चलिए अभी देखिए। आप बालकनी में जा सकते हैं, छत पर जा सकते हैं, चांद का दीदार भी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और वक्त हुआ है अभी 9:16। बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: शमशाद बिलारी से।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं सर, अपने बारे में बताइए आप।
1: काम करते हैं, ये रेडीमेड की छोटी मोटी दुकान है।
0: अच्छा, छोटी मोटी दुकान है।
1: हाँ जी।
0: ओके जी, बताइएगा, सब खैरियत से हैं घर परिवार में आपकी?
1: सब बढ़िया है।
0: ओके, चलिए, सभी को अच्छा रहना चाहिए। ये बताइएगा आप सो, आपने अभी कॉल किया है, पहले शो सुना या फिर डायरेक्टली कॉल किया आपने?
1: सुना था तो कई बार आपसे बात भी हुई है, आपके एक फंक्शन में, शादी में मुलाकात हुई थी आपसे मुरादाबाद में, मंसूर कॉलोनी में।
0: अच्छा, आई रिमेम्बर, हाँ हम शादी में गए थे, राइट?
1: जी जी जी।
0: ओके सर, हाँ अभी मुझे याद आया।
1: जी
0: जी, बताइएगा सर, आप क्या सुनना चाहेंगे आज, आज की शाम?
1: कोई फूल ना खिलता, ये कली भी न होती, फिल्म का नाम है पैसे की गुड़िया।
0: अच्छा, और ये ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में है?
1: जी जी जी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक।
1: हमारे साथ में एक दोस्त है ये।
0: हाँ हाँ, बताइएगा कौन है आपके दोस्त है, जिनका नाम लेने के लिए आप बेकरार हैं?
1: जी, हमारे ये अजीज हैं, इरशाद मंसूर कॉलोनी से।
0: हाँ जी।
1: और ये बिलारी से हैं, जाविर हैं, इमरान हैं, रईस आई हैं, ये सब आप सुन रहे हैं, ये सुनना चाहते हैं गाना?
0: जी शुक्रिया, सभी को हम कहना चाहेंगे कि आप सब हमें सुन रहे हैं और अपनी पसंद का आप ही प्यारा सा ट्रैक सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच, खुशी से बात करके खुशी हुई, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। चलिए सुनिएगा ये खूबसूरत सा ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ। दोस्तों, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आज ये मौका आपको मिला है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये 9837896896।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, 28 जून की तारीख है आज एंड खूबसूरत सी इवनिंग है संडे की, जो कि अपने आप में बहुत स्पेशल होता है। संडे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते हैं। और अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना, और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते दीदी, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप बताइएगा, आपका शुभ नाम क्या है मैम?
1: मेरा नाम है ललिता कश्यप, मुरादाबाद से बोल रही हूँ, नवीन नगर से।
0: जी, और बताइए तबीयत कैसी है आपकी?
1: तबीयत ठीक है, प्रभु की कृपा है।
0: हाँ जी, ऊपर वाले की हमेशा कृपा रहती है।
1: बहुत दिनों में आए हो दीदी जी आप।
0: हाँ, आज लॉन्ग टाइम में आई हूँ, तो मुझे लगा चलो आज अपने श्रोताओं से गुफ्तगु करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया करा, हमने कहा चलो हम भी दीदी से गुफ्तगु करा जाए।
0: नहीं, अच्छा किया आपने कॉल किया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके मैम। और बताइएगा,
1: आपसे ज्यादा तो मुझे हो रही है।
0: अच्छा हाँ, वो साफ साफ झलक भी रही है आपकी खुशी।
1: हाँ जी, तो और घर परिवार में सब बढ़िया दीदी?
0: हाँ जी हाँ जी, ऑल गुड। आप बताइएगा, आपके परिवार में सब ठीक है, फैमिली में?
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: ओके, आपके साइड पंखा चल रहा है ना अभी? मैंने कहा आपके पास पंखा चल रहा है ना, हवाएं आ रही हैं, हवा की साउंड आ रही है। सॉरी
1: दीदी, गर्मी बहुत हो रही है।
0: गर्मी बहुत, सुबह बारिश तो हुई थी, एक झलक बारिश हुई, उसके बाद बंद हो गई।
1: वो तो भगवान जी ने बस नेक कर दिया कि लो बारिश के लिए परेशान हो रहे हो।
0: पता है आपको ललिता जी, जब सुबह बारिश हुई तो मुझे लगा आज पूरा दिन ऐसा ही रहने वाला है, खूबसूरत सा।
1: अच्छा, पर ऐसा
0: प्रभु ने
1: करा नहीं,
0: पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ जी, तो आप बताइएगा मैम, डिनर किया आपने? खाना खाया अभी नहीं?
1: नहीं मैम, अभी बना के हटे हम लोग।
0: अच्छा अच्छा, ओके।
1: अब आपका शो सुनना है, अब खाना खाएंगे। और आप लोग खाना खाया है? खाएंगे जाके?
0: नहीं मैम, मैंने भी सोचा जब अभी हमारे श्रोताओं ने नहीं खाया तो हम कैसे खा लें।
1: और क्या, खाना खा के फिर नींद आती है ना दीदी?
0: हाँ जी, तो मैंने कहा शो करने के बाद ही डिनर करेंगे हम तो।
1: सही
0: जी, आप बताइएगा क्या सुनेंगे आज की शाम?
1: छोटी बिटिया का एक गाना है, वो फना मूवी का गाना है ना।
0: हाँ जी, चंदा चमके।
1: हाँ जी, चंदा चमके।
0: ओके, तो चंदा तो चमक रहा है, देखो आसमान में कितना खूबसूरत है।
1: हाँ जी, चंदा रात को चमकता है, सूर्य भगवान दिन में चमकता है, वो निकलने नहीं देते।
0: हाँ एग्जैक्टली राइट।
1: तो बहुत गर्मी हो रखी है, सभी लोगों भाई अपना अपना ख्याल रखो।
0: बिल्कुल ललिता जी, थैंक यू
1: दीदी, आप भी और हम भी।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बेचारे पक्षियों के लिए भी ध्यान रखें और पेड़ पौधों का भी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सभी का ध्यान रखना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। आपने कॉल किया, धन्यवाद मैम। और सुनवाते हैं प्यारा सा उनकी छोटी छोटी सी लिटिल डॉटर की रिक्वेस्ट पर, ये प्यारा सा ट्रैक हम सुनते हैं। दोस्तों तब तक मुझे आप भी कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। खुशी आपके साथ है, मुस्कुराइएगा आप, और इस खूबसूरत ट्रैक को भी सुनिएगा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आती है और मुझे यकीन है कि आपको भी खुशी होती होगी जब खुशी यहाँ पर आती होगी। हाँ, होती है ना। ओके, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं हमारी श्रोता। चलिए, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए आप। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप?
1: मैं ठीक हूँ। मैं शबीना खान रहमत नगर मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: जी बताइए शबीना खान जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मैम मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और बताइए शबीना जी, आपसे हमारी शिकायत है, आपने इतनी गर्मी क्यों करवाई है?
1: जी मैम, पता नहीं क्यों इतनी, मतलब ज्यादा ही गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा थी आज तो।
0: हाँ,
1: दिन
0: बहुत ज्यादा गर्मी थी और फिलहाल
1: कुछ अच्छा लग रहा है।
0: अभी अभी का जो मौसम है फिलहाल ठीक है ना, मतलब पहले से राहत है।
1: जी मैम, बिल्कुल ही मतलब अपोजिट हो गया अभी, जैसे दोपहर का देखे।
0: हाँ, दोपहर में तो धूप निकलती है तो वो निकलना ही नहीं होता है घर से बाहर, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है।
1: जी मैम,
0: तो आप बताइएगा शबीना जी, घर में सब खैरियत से है ना?
1: जी मैम, सब ठीक है।
0: ओके, और आप इस समय क्या कर रही थी जरा बताओ हमें।
1: मैं तो मैम छत पर बैठी थी तो पापा ने बताया कि आपका प्रोग्राम आ रहा है कि
0: हाँ?
1: कॉल लगा रही है, लगा लो कॉल।
0: अरे वाह,
1: पापा बहुत शौक से सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
0: शुक्रिया सर को, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमें इतने ध्यान से सुनते हैं और रेडियो से इतना लगाव रखते हैं।
1: जी मैम, पापा बहुत तारीफ करते हैं आनंद सर की भी, आज भी मतलब कर रहे थे, कह रहे थे कि अलग ही एक मतलब खुशी होती है जैसे आप लोग बोलते हैं, आप और आनंद सर।
0: जी
1: जी मैम, रीना मैम, आप लोगों का मतलब प्रोग्राम सुन के एक हैप्पी सा मतलब हो जाता है, माहौल ही अलग हो जाता है, और जिस दिन ना सुने तो बहुत बुरा सा लगता है मतलब।
0: हाँ, वो अब ना आदत लग गई है ना सुनने की, और एक दिन अगर नहीं सुनते तो खाली खाली सा लगता है पूरा दिन।
1: जी मैम,
0: तो ये बताइए शबीना जी, अभी आप छत पर बैठी हैं और चांद को भी निहार रही होंगी पक्का। अच्छा बताइए, आज क्या सुनना चाहती हैं आप शबीना जी?
1: मैम बरसात के दिन आए ये लिरिक्स हैं, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: ओके, बरसात तो नहीं आई है लेकिन हाँ ये वाला गाना सुनकर थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, क्यों?
1: जी मैम, बरसात तो नहीं आई है, सॉन्ग को सुन के थोड़ा
0: हाँ सुकून मिल जाएगा।
1: जी मैम,
0: सुबह तो बारिश हुई थी ना हल्की सी?
1: हाँ सुबह हुई थी, बहुत हल्की हुई थी, और फिर दोपहर में फिर से वैसा ही हो गया मौसम।
0: हाँ वैसे ही हो गया, एग्जैक्टली राइट। शबीना जी आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनवाते हैं आपकी पसंद के प्यारा सा ट्रैक, मोस्ट वेलकम। ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का भी अच्छे से।
1: बाय
0: बाय। तो चलिए दोस्तों, शबीना खान जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये अमेजिंग सा ट्रैक एंड फ्रॉम द मूवी बरसात से। बस मैं आती हूँ छोटे से म्यूजिकल ब्रेक यूज़ पर।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। खुशी आपके साथ है और शो का नाम आपको पता है, जी हाँ, गीत आपके नाम से। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। टाइम हुआ है 9:51, 9:51 राइट नाउ टाइमिंग हो चुकी है स्टूडियो की घड़ी में। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैम जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम सोना मोहम्मद इतरत बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके काफी अच्छे हो जाते हैं। मैम आप प्रोग्राम में इतना अच्छा पेश करती हो, हमसे रहा नहीं जाता। मैम आप मतलब काफी अच्छी बातचीत करती हो सभी लिसनर से। मैम
0: जी शुक्रिया आपका। बताइएगा आप क्या सुनेंगे आज की शाम?
1: मैम उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ। मैम जो आप कॉल लेती हो ओनली, और मैम घंटी के साथ में लिया करो, मैम काफी अच्छा रहेगा।
0: ओके श्योर।
1: मैम नजीबाबाद में रामपुर में घंटी के साथ से मतलब साथ में कॉल लेते हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: ओके ठीक है, हम आपकी बात नोट कर लेते हैं। आप बताइएगा आप क्या सुनेंगे?
1: मैम आज मूवी का नाम है हमारा दिल आपके पास है। मैम उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है शुक्रिया शुक्रिया। मैम आज के सॉन्ग में वाला सॉन्ग प्ले कर देना, वाला सॉन्ग आपको डेडिकेट।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। दोस्तों आप भी मुझे फ़ोन लगाइए, लास्ट कॉलर शायद आप हमारे शो के हो सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। शुक्रिया शुक्रिया।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों हमें तो नींद बहुत आती है, लेकिन जब नींद आती है तो लाइट चली जाती है, और जब लाइट आती है तो नींद ही गायब हो जाती है। मेरे साथ ये बहुत बड़ा पंगा होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। फिर मैं क्या सोचती हूँ मैं बताती हूँ आपको। फिर मैं कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आती है। दोस्तों समय हुआ है 10:02 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, एंड अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना अमेजिंग, एंड इस खूबसूरत से गाने की रिक्वेस्ट में भेजी थी कार्तिक ने। तो दोस्तों अब मेरे जाने का समय हो गया है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं अब आपकी आरजे खुशी फिर मुलाकात करूंगी सुबह मॉर्निंग में, जी हाँ टुमारो मॉर्निंग मेरी और आपकी मुलाकात होगी इसी रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।

0: देश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं?
1: तो आइए ASK इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली रोड बुढ़नपुर अमरोहा में, जहां DLED BTC 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स एडमिशन ओपन हो चुका है,
0: साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: कॉल 9045912348।

aşık ana, aşık ana ben.

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।